0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते। 5:04 हो चुके हैं और 24 जुलाई फ्राइडे का प्यारा सा दिन आ चुका है और अभी बाहर थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन मेहनत करने वालों की सुबह हो चुकी है। अगर आप भी अपने सपने अपनों के लिए निकल पड़े हैं तो बस अगले दो घंटे मेरा साथ निभाइए। मैं हूं आपके साथ पूनम आरम टू रेडियो मस्ती के साथ। चलिए इस ठंडी सुबह में गीतों की गर्माहट घोलते हैं, इंजॉय करते हैं प्यारे प्यारे से पुराने गाने।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balawit station.
1: Testing 1 2. Yeah.
2: Kabhi socha hai?
1: MBC Radio ke studio se live or direct.
2: Listeners se baat karna kaisa lagta hoga?
1: Most popular Bollywood hits play karna.
2: Masti karna aur pure Mauritius ko entertain karna kaisa lagta hoga? Agar haan, तो फिर ये है आपका मौका.
1: MBC Radio presents One Day RJ.
2: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363.
2: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस.
1: डोंट मिस इट.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 14 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ राइज एंड शाइन। कहते हैं ना जैसे सूरज उगने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेतों में पहुंच चुके हैं, जो पानी दे रहे हैं, जो फसल काटने की तैयारी में हैं, कोई सब्जियां काट रहा होगा और कुछ लेके जा रहे होंगे मार्केट के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जो फिर दिन शुरू होगा और उसके बाद सब्जियां खरीदने जाएंगे। तो हम चाहते हैं उनके लिए भी एक प्यारा सा गाना हो जाए, क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग हैं जिनकी वजह से हमें हमारे घर में अन्न मिल पाता है। तो इन्जॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना उन सब के लिए जिनको भी गार्डनिंग से प्यार है, जिनको सब्जियों और खेतों से प्यार है। इस आप सब के लिए और ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ साथ हम इतना आपको ज़रूर कहेंगे, मैसेजेस भेजना मत भूलिएगा 5499124 पर।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:27 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम भाई। मुझे पता है कि इस टाइम जो है ना 5:27 तो हो गए हैं पर बाकी उन लोगों को लग रहा होगा अरे अभी तो 3 बजे हैं और सोने दो अलार्म साइड में बज रहा होगा, कभी बंद कर रहे होंगे, कभी कह रहे होंगे हाँ मुझे 5 मिनट में उठा देना, बस सिर्फ और 5 मिनट। ये हमेशा हर घर में चलता है तो कोई बात नहीं, 5 मिनट ले लीजिए और उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए भाई 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं प्यारे प्यारे से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका थैंक यू। और जिन्होंने मैसेज नहीं भेजा कोई बात नहीं, बस आपको इन्जॉय करना है गानों को, बस ये है। साथ में हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं जैशन हरदयाल जी और इन्जॉय कर रहे हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ में और कह रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। सुरेश शर्मा साजदा जी भी जुड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ, इस प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। पद्मिनी जी भी जुड़ी हुई हैं और साथ में इन्जॉय कर रही हैं। टोनी जी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं सारे जने जो जो अभी उठे नहीं हैं उठ जाओ, रेडियो मस्ती स्टार्ट हो गया, क्या बात है, थैंक यू सो मच। रेखा ननकू जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। साथ में अब्दुल एंड सायरा बानो जी भी जुड़े हुए हैं और अपनी एक दोस्त जिसका नाम है नसरीन उसके लिए एक सॉन्ग सुनाना चाहते हैं जो कि इस समय फिलिंग स्टेशन में काम कर रही है और कह रहे हैं उनकी मेहनत बहुत होती है तो मैं जानती हूँ, चाहे वो शेफ्स हों, चाहे वो किचन में कोई काम कर रहा हो, चाहे फिलिंग स्टेशन में या कोई भी काम कर रहा हो, हर चीज़ में मेहनत है, पर कोई बात नहीं, मेहनत का एक दिन रंग ज़रूर आता है। तो इन्जॉय कीजिए गानों को और साथ साथ काम करते रहिए जो भी आप काम कर रहे हैं।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

सुनो, जो एक दिन बन गया हीरो तो एक एक को सजा दूंगा। मैं डेटों के लिए सब हंसने वालों को रुला दूंगा। मुझे दर पर खड़ा करके सता लिया।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: Your daily horoscope.
0: RM2 Radio Musty.
3: 5:45 हो चुके हैं दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम और सुबह की ताजी हवा, चेहरे पर मुस्कान और अब बारी है जानने की आज राशि किस बात पर आपको ज्यादा चमकाने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं
1: एरीज मेष राशि।
3: आज आपका जोश देखते ही बनेगा, रुका हुआ काम फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। जिस मौके का इंतजार था वो दस्तक दे रहा है। मुस्कुरा कर शुरुआत कीजिए, दिन आपका साथ चलेगा।

0: की कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज दिल भी खुश रहेगा और माहौल भी, अपनों का साथ बिताया हुआ समय यादगार रहेगा, काम और आराम का अच्छा तालमेल रहने वाला है, दिन छोटी छोटी खुशियों से भरा रहेगा, लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज आपकी बातों में अलग ही चमक रहेगी, नई मुलाकात या नई खबर उत्साह बढ़ाएगी, कुछ नया सीखने का मौका हाथ लग सकता है, हर पल का आनंद उठाइए, लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: आज घर से निकलते समय मुस्कान साथ लेके जाइएगा, परिवार का प्यार आपको नई ऊर्जा देगा, मन हल्का रहेगा और काम आसानी से बनेंगे, खूबसूरत दिन आपका इंतजार कर रहा है, लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज आपकी मौजूदगी सबका ध्यान खींचेगी, तारीफ सुनने का मौका मिल सकता है, जो सोच रखा है उस पर कदम बढ़ाइए, आज का दिन आपकी चमक बढ़ाने वाला है, लकी कलर है गोल्ड, लकी नंबर है 9।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज खुद को थोड़ा खुलकर जीने दीजिए, नई सोच नए रास्ते दिखा सकती है, हर काम आराम से और पूरे मन से कीजिए, दिन उम्मीद से बेहतर बीतेगा, लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज रिश्तों में हंसी और अपनापन बढ़ेगा, किसी अपने से अच्छी खबर मिल सकती है, मन खुश रहेगा और हर काम आसानी से हो जाएंगे, अच्छी खुशियां बांटिए और बटोरिए, यही है आज आपका, लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपका हौसला नई राह बना सकता है, रुकी हुई बात आगे बढ़ने के संकेत है, खुद पर भरोसा रखिए, समय साथ देने वाला है, शाम तक कोई सुखद पल आपको मिल सकते हैं, अपने परिवार के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं जिंदगी को, लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज कुछ नया करने का मन बनेगा, सफर सीख या नई पहचान कुछ अच्छा जुड़ सकता है आपकी जिंदगी में, उत्साह बनाए रखिए, किस्मत भी आपका साथ देने वाली है, दिन रोमांचक भरा रहेगा और लकी कलर बनेगा आपका पर्पल, लकी नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपकी लगन रंग दिखाएगी, काम में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, कोई आपकी मेहनत की सराहना कर सकता है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज नए विचार आपकी पहचान बनेंगे, किसी अलग सोच का फायदा मिल सकता है, मन की बात खुलकर कहिए, आज का दिन नई उम्मीद लेकर आया है, लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज मन खुश रहेगा और चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी, अच्छे लोगों का साथ मिलने वाला है और ऊर्जा बढ़ेगी, जो भी कीजिए पूरे दिल से कीजिए, आज का दिन यादगार रहेगा, लकी कलर है सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो दोस्तों दिन की शुरुआत कीजिए मुस्कान के साथ, अच्छे विचारों के साथ, पूरे उत्साह के साथ, मैं थी आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिए आपका अगला प्यारा सा, ये जो गाना है ये बहुत ही प्यारा सा है, इसको इंजॉय जरूर कीजिएगा।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musti.

0: किरण मेरी बात तो सुनो।
1: सुना जाकर अपनी चहेती को, मुझसे तुम्हारा क्या वास्ता, क्या उसी के पास? छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ दो, वरना
2: प्यार सच्चा हो तो ये वक्त भी रुक जाता है।
1: अब चाहे रुक जाए, मैं नहीं।

0: सुना था हसीनों को गुस्से से लोगों को होश आवाज उड़ जाती, लेकिन आपके गुस्से से तो गाड़ी का पेट्रोल उड़ गया। देखिए उधर मत जाइए, रास्ता बहुत खतरनाक है, जंगली जानवर बहुत मिलते हैं।
1: हुआ करे, तुमसे ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगा।
2: आ गए आपके कदमों पे उतर कर बादल।
1: जाओ जाओ, मुझे न बनाओ।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. ऑगस्टो अजायल पेगेस के नेतृत्व में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोतवी स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की. इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास भी शामिल हुए. इस दौरे का उद्देश्य कस्टम्स प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, परिचालन लागत को कम करना और ड्रग्स तस्करी, अवैध उत्पादों तथा टैक्स से जुड़ी धोखाधड़ी से सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करना है. IT सेक्टर के पूर्व मंत्री दीपक बालगुबिन को

फोन टैपिंग जांच के सिलसिले में समन भेजा गया है। याद दिला दें कि इस मामले में सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख और पूर्व एसीपी लील राम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। सीसीआईडी का आरोप है कि लील राम दियाल ने प्रेस्ट सोल ब्रांट

0: अंश मुस्तास लीक्स नाम के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के सामने आए हैं। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए। अमेरिकी सेना ने बताया कि गुरुवार को शाम ईरान के सैन्य ठिकानों पर नया दौर शुरू किया गया। ये 13वीं रात लगातार हमले है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा जबकि दोपहर को उत्तर पश्चिम दिशा में थोड़े से बादल घिराएंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठाएंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:43 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez. À la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402-8000.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 6:10 हो गए और देखते देखते पता ही नहीं चला एक घंटा कैसे निकल गया. मतलब मुझे लगता है जैसे आप लोग, कई लोग इस समय बस स्टॉप पे खड़े होंगे, बस का इंतज़ार कर रहे होंगे, कुछ लोग मेट्रो का इंतज़ार कर रहे होंगे, कोई टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होंगे, कोई ऑफिस जाने की भाग दौड़ में होगा और कह रहा होगा जल्दी जल्दी ऑफिस पहुँचना है, ये काम वो काम. पर मैं जानती हूँ कि काम सबको होते हैं, बहुत जल्दी होगी आपको. पर थोड़ा सा मुस्कुराइए, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है. और हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो भी आराम से जाएं, अपने घर वापस जब आएं शाम को तो वो भी मुस्कुराते हुए आएं. पर हम इतना ज़रूर कहेंगे ये पुराने गाने हैं ना, दिमाग को बहुत शांत कर देते हैं, इंजॉय कराते हैं, बूस्ट देते हैं और आपको एहसास दिलाते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर इस प्यारे से दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करते हैं. तो चलिए भाई, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा. चलिए इंजॉय करते हैं ये वाला गाना.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जो दोस्तों चुपचाप हमारा साथ निभा रहे हैं बिना मैसेज के, पर आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद. मैं तो कहती हूँ कि आपकी सुबह बहुत सुंदर हो, प्यारी सी हो. ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते रहें, कुछ काम कर रहे हैं काम करते रहें, पर हमारा साथ देते रहिए. उसके साथ साथ हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे साथ मैसेजेस के साथ जुड़े हुए हैं. तो उनके मैसेज ले लेते हैं. धनवेश्वर जी अपनी वाइफ सुनीता जी के साथ हैं और रेखा, संजीव, निशा, देवदोस्त फैमिली भी साथ जुड़ी हुई हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को. थैंक यू सो मच. हिमलता भूजन जी जुड़ी हुई हैं और सभी को कह है हैव अ गुड डे, क्या बात है, थैंक यू सो मच. जगमणि जी साथ दे रही हैं, किशन रघुनाथ सुरीनाम से. अगला गाना अपनी वाइफ माला और दो प्यारी सी परियां हैं उनके घर में जिसका नाम है जिया एंड रिया. बस उनको इतना कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा बस तुम्हारे ही ख्वाबों में खोया रहता हूँ. क्या बात है, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए और एक इस प्यारे से मैसेज को हमारे साथ शेयर करने के लिए. तो आपकी परियां खुश रहें, स्कूल जा रही हैं तो स्कूल जाएँ और घर पर हैं तो बस इंजॉय करें. और रेखा जी साथ में जुड़ी हुई हैं और अपने बेटे अंश के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है, बिल्कुल हम चलाएंगे. ललित जी साथ दे रहे हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ में और सभी को कह रहे हैं मॉरिशस में तो मॉर्निंग है पर हमारे यहाँ रात है. और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सबकी हैप्पी मॉर्निंग और मेरी गुड नाइट हो अच्छी सी, क्योंकि रेडियो मस्ती मेरे साथ है. थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इन्जॉय कीजिए ये गाने और उसके बाद 6:30 बजे आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

ले लीजिए इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। शुक्रवार 24 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑगस्टो अजाएल पेरेज के नेतृत्व में आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोर्ट लुई स्थित न्यू ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित गामनावाज भी हुए शामिल। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना है। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय निर्धारित किए हैं। सेंट्रल प्लाटो इलाके इससे सबसे ज्यादा हुए हैं प्रभावित। और विदेश स्तर पर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते

0: तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। ये 13वीं रात लगातार हमले हैं। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोतली के ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऑगस्टो अजाएल पेरेज कर रही है। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित गामनावास भी शामिल हैं। IMF के इस दौरे का उद्देश्य है मॉरिशस की कस्टम्स प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, सेवाओं की दक्षता बढ़ाना और परिचालन लागत को कम करना। इसके साथ ही इसका उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध सामानों के प्रवेश और टैक्स चोरी से सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करना भी है। IMF का मानना है कि मॉरिशस कस्टम्स पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उनकी सिफारिशों से परिचालन की दक्षता और दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार होने की उम्मीद है। सिंचा मुटु की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस आया हुआ है। मकसद है देश में टैक्स प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों के मुकाबले इसकी परिपक्वता के स्तर का आकलन करना। ऑगस्टो अजाएल पेरेज, आस्कागा, स्टेफेन मेंडेस, आल्दो सिल्वानो और ऑस्कर अल्बर्टो नियेतो मोरा मॉरिशस के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास की उपस्थिति में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ भेंट की। एमओआरए के महानिदेशक ने कहा, ट्रेड फैसिलिटेशन से जुड़े खतरे पाटने के लिए और दूसरी तरफ देश में अवैध सामानों का प्रवेश रोकने के लिए वे हमारे टैक्स क्षेत्र को ज्यादा मजबूत बनाने में हमारी सहायता करेंगे। साथ ही कस्टम्स की कारगरता बेहतर करने में मदद मिलेगी। जब आयातक या निर्यातक कंटेनर मंगवाते हैं तो वे जल्द से जल्द उसे प्राप्त करना चाहते हैं। हम ऑपरेशन खर्च भी कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष की क्षमताएं बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। टैक्स अधिकारियों द्वारा इस मूल्यांकन के बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके साथ मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की कार्य क्षमता बेहतर करने के लिए सहायक उपाय भी शामिल होंगे।
0: और इस बीच इस शुक्रवार यानी कि आज 24 जुलाई से नए अमरीकी टैरिफ लागू हो रहे हैं। अमरीका के कुल 60 व्यापारिक साझेदार इसी से प्रभावित होंगे, जिनमें कनाडा, ब्राजील, चीन, भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ शामिल हैं। अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर 10% या फिर 12.5% का टैक्स लगाया जाएगा। मॉरिशस इस सूची में शामिल नहीं है, जिन्हें इन नए उपायों के तहत लक्षित किया गया है। इसके अलावा ये शुल्क पिछले फरवरी में 150 दिनों की अवधि के लिए लगाए गए 10% के अस्थायी कस्टम्स की जगह लेंगे। ये वाशिंगटन के समयानुसार रात के 12:01 से लागू होंगे, जो मॉरिशस के समयानुसार सुबह के 8:01 तक निर्धारित हैं। सरकार की विजन 2050 परियोजना ने कल एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया है। गवर्नमेंट मॉरिशस में देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों की को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य है 2050 तक मॉरिशस को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2000 मॉरिशन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले जल्द ही आम किया जाएगा। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का।
2: विजन 2050 पर 6 महीनों के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श के बाद अब आने वाले दशकों के विकास को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख रणनीतियों को अंतिम रूप देने का समय आ गया है।
3: बिटवीन नाउ एंड 2050 वी विल बी लूजिंग 180,000 मॉरिशियंस टू एजिंग, व्हिच वी विल नॉट।
2: 23 जुलाई को सहरी लालबाग जी हॉल में आयोजित बैठक में सार्वजनिक

0: क्षेत्र के प्रतिनिधियों, आर्थिक क्षेत्र के संचालकों, शिक्षाविदों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को मुख्य निष्कर्षों पर जानकारियां दी गईं। प्राथमिकताओं में नशा और अपराध मुक्त समाज का निर्माण, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना, आधुनिक ढांचों का निर्माण, अच्छी नौकरी पैदा करना, रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ बनाना तथा अधिक लचीली नवाचार आधारित और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का निर्माण शामिल है।
1: $50 by $50
0: एक ऐसी अर्थनीति जो 2050 तक $50 बिलियन की होगी। इसके लिए काम करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा और आश्वस्त करना होगा कि सभी इसमें भाग लें। वक्ताओं ने मॉरिशस के लिए ऐसी दीर्घकालिक और साझा राष्ट्रीय विजन के महत्व पर बात की जिससे रणनीतिक बदलावों से परे जाकर आने वाली पीढ़ियों की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। हमें 2050 का मॉरिशस दिख रहा है, ये मार्ग प्रशस्त करता है। आशा है कि इसके लिए सरकार माध्यम और निवेश देगी। ये कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ठोस वित्तीय स्थिति की जरूरत है। शिक्षा को भी पर्याप्त होना होगा ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके।
1: La sécurité alimentaire évidemment est un sujet très important.
0: खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है और देखना होगा कि भूमि का प्रयोग कैसे किया जाए।
2: De l'utilisation des terres à Maurice
3: est très important qui tout à chacun dans nos populations de sentir belong to that vision.
0: सभी को इस विजन को अपनाना चाहिए, इसे अमल में भी लाया जाना चाहिए। वैलिडेशन चरण के बाद दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसके बाद चरणों में इसे लागू किया जाएगा।
4: L'avenir se prépare si nous pas faire ça.
0: भविष्य की तैयारी चल रही है। आज जल, बिजली, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या, पेंशन, सब प्रकार की चुनौतियां हैं क्योंकि इसकी तैयारी या पूर्व योजना नहीं की गई थी। हम अपने बच्चों को ऐसा देश नहीं सौंप सकते हैं। इसी वास्ते विजन 2050 भले ही दूर दिखता हो लेकिन तैयारी आज से ही शुरू है। विजन 2050 की तैयारी के तहत मॉरिशस और रोड्रिग्स में 13 परामर्श बैठकें लगाई गईं। इनमें अलग अलग क्षेत्रों से 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आर्थिक क्षेत्र की प्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, शिक्षाविदों तथा अन्य साझेदारों के साथ भी विचार विमर्श हुए। अधिकारियों के अनुसार ये प्रक्रिया आने वाले 25 सालों में मॉरिशस के सतत विकास और विजन 2050 का मजबूत आधार बनेगा।
5: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। आईटी सेक्टर के पूर्व मंत्री दीपक बालगोबिन को फोन टैपिंग जांच के सिलसिले में समन भेजा गया। याद दिला दे कि इस मामले में सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख और पूर्व एसीपी लीलराम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। सीसीआईडी का आरोप है कि लीलराम दियाल ने प्रेस्टसोल ब्रांड के एक लिसनिंग टैपिंग डिवाइस का एक्सेस कोड देने से इनकार कर दिया था। आशंका है कि इस उपकरण का इस्तेमाल बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था जिसके कुछ अंश मुस्तास लीक्स नाम के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के में सामने आए हैं। मॉरिशस अफ्रीका की सेवा में एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र यानी कि रीजनल फाइनेंशियल हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए टीडीबी यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने कल एबेन में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक रणनीतिक साझेदारी है जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवा क्षेत्र में कौशल विकास और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा

0: देना है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना है। यह केंद्र अगले सप्ताह से शुरू होगा और शुरुआती चरण में सप्ताह में एक दिन कार्य करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की क्रमिक भर्ती के साथ ही यहां कंसल्टेशन यानी कि जांच की सुविधा समाप्त सप्ताह में 4 से 5 दिन उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी सहयोगी कोयल सीटल ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू से बात की, उनको सुनते हैं विवरण अशिता रघु का।
1: ला क्वीन गांव सेंट्रल फ्लक से थोड़ा कटा हुआ इलाका है और यहां से फ्लक तक जाने में वृद्ध जनों को मुश्किल होती है, इसलिए सुबह रक्त परीक्षण या छोटी बीमारियों के लिए क्यों ना यही एक स्वास्थ्य केंद्र खोलें।
0: 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय निर्धारित किए हैं। सेंट्रल प्लेटू इलाके इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसकी मुख्य वजह जलाशयों के जल स्तर में चिंताजनक गिरावट है, विशेष रूप से देश का सबसे बड़ा जलाशय महोवाक्वा, जिसका जल स्तर गिरकर लगभग 43% के करीब पहुंच गया है, जैसा कि ऊर्जा मंत्री पत्रिका आस्यावादन ने भी कहा है। पानी के भंडारण को बचाए रखने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने दैनिक आपूर्ति घटाकर सिर्फ एक समय कर दी है। सुबह 3 बजे से रात के 8 बजे के बीच कुछ इलाकों में प्रतिदिन लगभग 6 घंटे ही पानी दिया जा रहा है। यह असाधारण कदम तब तक जारी रहेगा जब तक कि बारिश को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। हालांकि सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने ये स्वीकार किया है कि पाबंदियों को यह पहला चरण कई उपभोक्ताओं के लिए काफी कठिन रहा है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार प्रमुख सुनील गोपाल को सुनते हैं विवरण अशिता रघु का।
2: Au départ, nous tiguions un peu de difficultés dans certaines parties de Plaine Williams. Donc, on a manjumun qui reste.
1: शुरुआत में प्लेन विलियम्स के कुछ हिस्सों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। ऐसे परिवार हैं जो ऊंचाइयों पर रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर के ऊपर पानी का टैंक है, जैसे पहले या दूसरे माले पर। इसलिए जब ये नई समय सारिणी लागू की गई तो ऐसे परिवारों के यहाँ पानी पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। इस स्थिति में वाल्व ऑपरेशन चला गया जिससे समान वितरण कर पाएंगे, क्योंकि देखा गया है कि एक सड़क पर एक हिस्से में पानी आता है और दूसरे हिस्से में नहीं। तब इस स्थिति में हम इन कठिन इलाकों में पानी भेजते हैं। आमतौर पर लगभग बहुत जगहों पर हमने तकनीकी कार्रवाई चलाई है। हमारी टीम मेहनत कर रही है ताकि जहाँ कमी हो रही है वहाँ उसको दूर हम कर सके।
0: इरोजन, बढ़ती शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण मॉरिशस के समुद्र तटों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि साल 2010 के आसपास तैयार की गई इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पहले से ही मौजूद है, लेकिन समस्या ये है कि इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही व्यावहारिक रूप से लागू किया गया। ये बात पर्यावरण प्रबंधन विशेषज्ञ प्रिसिला इराना ने कही है। उनका मानना है कि तटीय सुरक्षा के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें अधिकारियों से लेकर आम जनता तक सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी बहुत ही जरूरी है, जो कि पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखे। हमारी सहयोगी शैली नियबन ने प्रिसिला इराना से बात की है, विवरण अशिता रघु का।
3: Pour nous, il est vraiment important qui quand nous pécose, c'est sur la côte.
1: हमारे लिए ये अत्यंत जरूरी है कि जब हम तटीय संचालन की बात करते हैं उसे पूर्ण रूप से देखा जाए, यानी हम इसे एक प्रणालीगत समग्र बहुक्षेत्रीय बहुकालिक तथा बहुआयामी दृष्टिकोण से देखें। तटीय क्षेत्र केवल कटाव और विकास का ही विषय नहीं है, बल्कि ये पहचान, संस्कृति तथा पारंपरिक एवं पैतृक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। ये सभी पहलू एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे केवल एक समस्या तक सीमित नहीं किया जा सकता और ये उम्मीद

0: भी नहीं की जा सकती कि एक समस्या का समाधान हो जाने पर बाकी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी।
1: ये वक्तव्य गुरुवार को पोटलवी में मीडिया ट्रस्ट द्वारा पत्रकारों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान दिया गया, जो हिंद महासागर आयोग की रिकॉस परियोजना का हिस्सा था। आपको बता दें कि बजट 2026-2027 में कोस्टल इरोजन एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए पहले ही 4 बिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि अगले 5 वर्षों में 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर 11.5 किलोमीटर से अधिक समुद्र तटों का रिहैबिलिटेशन किया जा सके।
2: La question qui nous est là, c'est qui s'en a décidé? Comment nous réussir à mettre en place un système, un mécanisme pour nous décider ensemble?
0: प्रश्न ये है कि कौन फैसला लेगा और कैसे एक साथ मिलकर निर्णय लेने के लिए एक मेकानिज्म तथा प्रणाली स्थापित की जाए और तट संबंधी गतिविधियों के मामलों में उन आवाजों को अवसर प्रदान करें जिन्हें अक्सर नहीं सुना गया है। आज हम ब्लैक रिवर जिले के लिए एक एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस कार्य योजना को समर्थन मिलेगा और इन बदलावों को एक साथ लाने में सभी साझेदारों का साथ व समझदारी मिले।
1: विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने बताया कि गुरुवार शाम को ईरान के सैन्य ठिकानों पर नया दौर शुरू किया गया। ये 13वीं रात लगातार हमले हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये हमले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा व्यापार जहाजों को दी जा रही धमकियों को कम करने और ईरान को जवाबदेह ठहराने के लिए किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बीच ये हमले हो रही हैं। सऊदी अरब ने बुधवार को अमेरिका के साथ एक अहम परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को असैन्य परमाणु तकनीक देगा। ये समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब पूरे मध्य पूर्व में युद्ध और तनाव का माहौल है। चीन ने गुरुवार से अपने दक्षिण पूर्वी प्रांत फुजियान के तट के पास ताइवान जल मार्ग के कुछ हिस्सों में 2 दिन का लाइव फायर अभ्यास शुरू किया। ये खबर अमेरिकी विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच कई मुद्दों पर बातचीत के एक दिन बाद आई है, जिसमें लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान भी शामिल है, जिस पर चीन अपना इलाका होने का दावा करता है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, जबकि दोपहर को उत्तर पश्चिम दिशा में थोड़े से बादल घेराएंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगुनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:43 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर।

चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑगस्टो अजाएल पेरेस के नेतृत्व में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोर्टलुइस स्थित न्यू ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास भी हुए हैं शामिल। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना है। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय निर्धारित किए हैं।

0: से सबसे ज्यादा हुए हैं प्रभावित। और विदेश स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। यह 13वीं रात लगातार हमले हैं। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फैजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

आयुषोक समाचार सुनते हैं रेलवे रोड रिवेज पोस्ट में। रेलवे रोड रिवेज पोस्ट में 67 साल की 67 years old की श्रीमती ललिता बी एस सिंह पैदाइशी नाम गणपत और जिन्हें सब लोग बिमला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री गिरीश बी एस सिंह के घर रेलवे रोड रिवेजी पोस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबू रिवेजी पोस्ट कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। ओबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नोवेल फ्रांस में 78 years old की श्री राजेंद्र प्रसाद चैतन्य जिन्हें सब लोग राजन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे उनके बेटे श्री विशाल चैतन्य के घर ओबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गामजिन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। रॉयल रोड बैलेंस सूरीनाम में 79 साल की 79 years old की श्रीमती सावित्री रामतोहल पैदाइशी नाम सिरतन और जिन्हें सब लोग साबित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर रोड बैलेंस सूरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर एफ फ्री Avenue Cardinal City Beau Séjour 4 Bonne Main. Number F Free. Avenue Cardinal City Beau Séjour 4 Bonne Main. 84 Salki, 84 years old ki. Shumati Kunti Ramson. Paidashi naam Sabnot. Aur jinhe sab log Parbha ke naam se bhi jante the. Unki mrityu ho gayi hai. उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर नंबर एफ्री एवेन्यू कार्डिनल सिटी बोसेजो 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कुदिगा किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। गाजादा स्ट्रीट स्टैनली रोजल में 91 साल की 91 years old की श्री मुतुकापेन जिन्हें सब लोग कैद्रेस के नाम से भी जानते थे और जो लाशुमिया के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर गाजाडा स्ट्रीट स्टैनली रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोंटें मोहोश किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 2:30। सर एडवर्ड हार्ट स्ट्रीट उलिये कैट्रोबोन में 53 साल की 53 years old की श्रीमती तजीना गंगा बिसुन पैदाशी नाम रूपचंद और जिन्हें सब लोग वीनू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज

0: आज दोपहर के 2:30 बजे उनके पति श्री स्वराज दादू गंगा बिसुन के घर स एटवर्ड हॉट स्ट्रीट उलिये कैथो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 2:30। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Problème les guerres, les baguettes les allées. Les capaves moi, les capaves toi, les capaves nous tous. Proteste les guerres aujourd'hui, pour qu'ils disent tu pas à risque un bon problème les guerres. Allô, enjoy to life avec Enke Life, parce qu'il s'abondit les Enke Life là, et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te bonne activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondit les Enke Life, mais là, te pébrons soin tous les guerres. Enke Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
2: RM2 Radio Musty.
3: तो दोस्तों आज की सुबह का मेरा साथ यही तक था। दिल से शुक्रिया आपने अपने इस सफ़र में मुझे मेरे साथ शामिल हुए और मैं तो यही कहूँगी राइज एंड शाइन तो जा रहा है पर हाँ यस अब आने वाली है आपके लिए साथ बहुत दिनों के बाद मनीष माँ तो उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। आरएम टू रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है। बाय बाय।

0: जुड़िया फिर सोनू निगम नजीज कौर की आवाज के साथ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द डे। 7:03 हुए हैं, आप जुड़े हैं आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ। मनीषा वापस ऑन एयर विद यू, आपके साथ में आने के लिए। वैसे मॉर्निंग में क्या शुरुआत कर रहे हैं हम, ऐसे बिजुड़िया के साथ और अन्य गाने भी हैं आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डोज ऑफ द डे विद अ गुड वाइब्स एंड एनर्जी एंड वेलकम बैक यहाँ पर जुड़ने के लिए। आई गेट सम रियली नाइस ट्रैक एंड ऊपर से क्या क्या कौन कौन से लोग हैं हमारे साथ जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं विद द गिफ्ट्स विद एवरीथिंग। सो वेलकम बैक
1: मॉर्निंग बीट।
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
3: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
1: RM2
3: रेडियो मस्ती।
4: Un nouveau voyage commence pour Maurice. Avec Ethiopian Airlines, la route Maurice Addis Abeba ouvre l'accès à plus de 145 destinations à travers l'Afrique et le monde. Pour les affaires, les études, la famille ou l'envie de découvrir ailleurs, une nouvelle option s'offre à vous. Contactez votre agence de voyage pour organiser votre prochain départ avec Ethiopian Airlines.
5: Depuis premier zoo, nous fin tout zoo là. À zut l'écoute, à zut côté. À chaque moment important des zut la vie. Nous extra happy trouve zut tous les zoos connectés, grandis, épanouis. Et ensemble, nous peut continuer. Continuer, causer, riez, potaser, se dépiler, danser, amuser, rêver, vibrer. Zodi, l'on complique confiant vous dîmer. Côte chaque nouveau technologie qui nous peut amener. Pour faire chaque Mauricien, vivre une expérience en compli, mighty CIA. Et c'est qu'ici, nous pour la même, à ce côté. Zodi, dîmer, vive-li avec mighty.
1: RM2
3: Radio Musty.

0: yes, yes.
1: Eddie, say that every day in front of the mirror. Whenever you're waking up, say that you're the best and you're doing the best. And everybody won't see the best, but you're the best.
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musti.
1: वैसे थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल कि यार ये जो अभिजीत का कंसर्ट है कब शुरू होने वाला है, व्हाट टाइम, स्टार्टिंग टाइम, क्यों? क्योंकि ये बोलना नहीं होता, क्योंकि आपकी देरी की वजह से ये कंसर्ट तो रुकेगा ही नहीं, शुरू हो जाएगा, आप तो मिस कर लेंगे। वैसे सही टाइम है 7:30 PM एट SBICC 5। ये ऐसे हमारे साथ हमारे लाखी विनर है, उनका नाम है, बोलती है, मैं बोलती हूँ, उनका नाम है नूतन गोपाल। कंग्रेचुलेशंस नूतन जी। जी हाँ, आज आपको 3 PM से पहले आ जाना चाहिए एंड पिक अप योर टिकट फॉर द गोल्डन एरा 90s एरा 2 featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on this Saturday 25th of July 2026 ko 7 baje ke baad, you know, 7:30 baje sharp, you just be there at SBICC 5 and enjoy kijiyega the beautiful song selection of Abhijit. Aise lag raha hai ki Poonam ji jaane wali hai, वह देख रहा है मुझको। स्टेप इन टू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रिलीव द अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइन बॉलीवुड्स, यू नो, गोल्डन एरा। एंजॉय एन इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर मैजिकल मैजिक, म्यूजिकल म्यूजिकल टाइम आउट देयर। वैसे टिकट स्टार्ट एट 850 rupees एंड अवेलेबल एट motiket.mu एंड रेजो ओता। यू डोंट मिस द अनफॉरगेटेबल कंसर्ट एक्सपीरियंस। फॉर रिजर्वेशन राइट नाउ यू कैन कॉल ऑन हॉटलाइन 4669999, 4669999।

0: हमारे सीनियर या सीनियरिता का जन्मदिन वैसे नाउ राइट नाउ यू कैन जस्ट एनरोल फॉर योर बर्थडे. यस ऑल दोस सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे और यू नो दैट पीपल आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे के ऐसा फैमिली मेंबर या फिर करीबी रिश्तेदार है जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपके पास उनका नंबर तो है ही, तो भेजिएगा 5991294 पर. डोंट फॉरगेट योर नेम एंड योर फोन नंबर ऑल्सो ताकि दोनों से बात हो पाए. आपके लिए बस आई गेट सम रियली नाइस ट्रैक. हियर वी गो, स्टे वेल कनेक्टेड. लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन वी विल बी बैक.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: कमला, आला सेंटी बों को तोला की तो बेहद परफ्यूम, तो लोटो सी बेहद परफ्यूम, तो साल दे बेहद सी बेहद परफ्यूम तो तो कॉमिक तो दो चेक सा सैंडल आलो किक toi lim sandal 24/7 toi
3: scène là tu pas trouver ça fait que t'es beau que scène là
1: allo kick gel air fresh no pocket size asti on me comprend tu mets air fresh no dans ton postement sportif
3: vrai même tu bien comique toi hein? Allez essaye tout allo kick peine ce deuxième sans bosser
4: allo kick freshness anytime anywhere.
5: Problème liquide, li baguette li ali. Li capave moi, li capave toi, li capave nous tous.
6: Protise tu liquide zodi, pour qu'il dîme, tu pas à risque un ban problème liquide.
5: Allô, enjoy to life avec Enke Life, parce qu'il s'abondit li Enke Life là, et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te ban activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondit li Enke Life, mais là, te pébron soin tu liquide. Enke Life, your heart, act now.
7: Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
8: Love.

वैसे दिल की बात समझने के लिए बस दिल की बात सुनना भी चाहिए होता है। यहाँ पर आपके दिल के कनेक्शन को और भी मजबूत बना देते हैं। वैसे यहाँ पर हम सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं आपके बर्थडे को। वैसे अगर आपके दिमाग में कोई है जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपको याद आ गया, तो प्लीज रजिस्टर राइट नाउ 5499124 पर सेंड मी योर नेम, योर फोन नंबर एंड द फोन नंबर एंड द नेम ऑफ द पर्सन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे। सिंपल है, और 5499124 पर एंड दैट पर्सन कैन ऑफ कोर्स विन अ वाउचर फ्रॉम लोलो हाइपरमार्केट।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वैसे कितनी बार हमने बस ये फोन नंबर ट्राई किया है. वैसे हम इंद्राणी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं फॉर सेंडिंग अस द रजिस्ट्रेशन. वैसे लकी ड्रॉ करने के बाद आपका नाम निकला तो है ही, लेकिन आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है फोन ने उठाया. उनका नाम है अमीना कुदियर जो रहती है रिव्या दिसोंगी. कंग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे गोज आउट टू यू माय डियर. हैप्पी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आरएम2 रेडियो मस्ती टीम.

0: रेडियो मस्ती।
1: ओह यस, रेडियो मस्ती की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ वंडरफुल डे आप दे अमीना जी। आप सेलिब्रेट करें आज आपका जन्मदिन, 64 इयर्स के हुए हैं आज। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे साथ ही साथ हम विश भी करना चाहते टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, मिस आउट ना कीजिएगा, हर रोज आप ट्यून इन कीजिएगा आरएम टू रेडियो मस्ती। और कब आपकी बारी भी आ सकती है पता भी नहीं चलेगा आपको। 5491294 पर दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर। Have a wonderful day, have a great day, all the best wishes and have a wonderful, wonderful birthday out there.

0: Prendre soin de soi, ce n'est pas forcément se priver. C'est simplement choisir ce qu'il y a de plus bon pour notre corps. Parce que votre bien-être nous tient à cœur, Flora puise dans la nature toute la pureté de sa margarine savoureuse. Naturellement riche en oméga 3 et 6 et en vitamines, Flora veille chaque jour sur votre précieux cœur. C'est un petit geste simple, sain, pour vous sentir bien, tout simplement. Flora, quoi qu'il arrive, protégez votre cœur.
1: Moments that matter with Sicom.
2: आज हमर दू कोरी 11 बरिस होता, 51 होता। ई ऊ उमिर है जब इंसान पाछे घूम के अपन जिंदगी के तनी आज जस्ती से देखे लगीला। उ जवान छोकरा छोकरी याद आवेला जे एगो जमाना में हमनी रनी जा पहिला कमाई के वेतन लिफाफा में बहुत जतन से रखल उ नोट अपन घर बनाई के सपना शादी लयका और उ त्याग जेकर बारे में कोई नहीं आज ले बोलीला। हमर उ बखत याद आवेला जब लाकुजिन के लताब पर घर के हिसाब किताब करथनी। उ महीना अभी भी याद बा जब ई निर्णय लेके पड़ल रहल कि घर बनाई के या नवा गाड़ी किने के। आर उ पल जब अपन सुतल लैका के देख के मन में खाली एक गो बात ठन ले रनी, चाहे कुछ हो जाए ई लोग के कोनो चीज के कमती नहीं होई दे। फिर समय बीतले गल, लैका आज बड़ा हो गए लंजा, माँ बाप बूढ़ा होई लग लंजा, जिम्मेदारी भी अपन रूप बदल दिली बाटी। और एक दिन एहसास होएला कि जीवन भी शादी निखन है जोन खाली निमन दिन के सहारे नहीं चलेला। ई में उतार चढ़ाव सब रहेला, ई चलेला एक दूसर के साथ निभैला से, विश्वास से, और उ इंसान के संगे जे बिना कोनो शोर शराबा करत हर बरिस हर दुख सुख में तोहर संगे खड़ा रहेला। उ तोहर पत्नी या पति हो सकी या फिर कबो कबो तोहर जीवन साथी भी, जिकर बारे में आप हरोश के

0: शायद नहीं सोचिला काहे काहे कि वो बस हमेशा तुहर संगे बगल में खड़ा रहेला जे तुहर बनावल हर एगो चीज के रक्षा करेला तुहर सपना और जीवन के सब योजना में हाथ देवेला आय होला काल के तैयारी में तुहर सहारा बनेला और तब भी तुहर संगे खड़ा रहेला जब भविष्य निमन से नहीं रोकिला एकदम एगो भरोसामंद बीमानी खन एगो ऐसन संगतिया जेकर पर आंख मुन के विश्वास करी सकब आजे तुहर पहिला सपना सब बड़ा फैसला सब चिंता प्लान और आय होला कई गो पीढ़ी ले हर कदम पर तुहर संगे रहेला सिकम की कहानी भी ऐसी है हा 51 बरिस के भरोसा की कहानी परिवार माँ बाप लैका और आज लैका के साथ निभाते 51 बरिस हो गल सैकड़ों हो गल समय बीतल गल और सिकोम परिवार के एगो सदस्य जैसन बन गल काहे कि सच तो यही है जिंदगी के सबसे खूबसूरत कहानी हमेशा विश्वास की कहानी रहेला
1: It was moments that matter with Sikom.
2: Allez, Lila! Flash sales, pète des bocs, coûte métrique! Depuis 17 jusqu'à 31 juillet, Vin profite d'un méga promo, l'ON Grand Sélection produit pour Oulakaz. Jusqu'à 50% discount, l'eau sanitaire, robinetterie, lavabo et collas, prix là, flash net, promo là, extra! Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
3: Dis maman, pourquoi tu mets toujours du Blue Band partout, sur mes tartines et même dans mes pâtes?
4: Ah, c'est mon petit secret pour te voir grandir en pleine forme. Dans Blue Band, il y a des oméga 3 et 6, des vitamines A, D, B6 et B12. Ça te donne de l'énergie et la concentration nécessaire à l'école. Et puis, Blue Band apporte ce petit goût en plus qui fait toute la différence.
5: Blue Band fait toute la différence dans vos repas. Tartiner, cuire ou napper, Blue Band apporte les nutriments essentiels pour la croissance de vos enfants.
6: Blue Band, a spoonful of nutrition.
7: La Global Healing Foundation vous invite pour son prochain événement Hanuman Katha, The Ultimate Devotion. Une session de Kundalini Awakening and Healing à Rivière des Anguilles, à côté du collège Rivière des Anguilles SSS, en face de la gare. Les prières se tiendront du samedi 25 juillet au jeudi 30 juillet par le Guru Sri Suraj Bihari. Vu la grande foule qui est attendue pour cette unique célébration, vous êtes prié de vous rendre sur les lieux à 19h15 précise pour vous assurer d'une place.
8: Radio Musti.
9: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
10: Morning beat.
11: Oh God, one more remix.
10: A good beat for your morning show.
8: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: बजकर 36 मिनट हुए हैं, आप जुड़े हैं आर एन टू रेडियो मस्ती के साथ। हियर वी गो फॉर द स्पोर्ट्स न्यूज़। गुड हियर अरविंद जी, गुड मॉर्निंग आपको।
1: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग आर एन टू लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों का औपचारिक उद्घाटन समारोह कल लगा। ओवो हाइड्रो इंडो अरेना में स्पेक्टेकुलर ऐतिहासिक ओपनिंग रही। किंग्स चार्ल्स थर्ड और क्वींस कमीला की उपस्थिति में ओपनिंग हुई। 3000 एथलीट्स, 215 गोल्ड मेडल्स, 10 खेल होंगे। आज से खेल शुरू। बाउल्स और पारा बाउल्स से फिर 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग और बॉक्सिंग होंगे। एमबीसी 11 पर ये खेल आप देख पाएंगे। हमारे एथलीटों पर खास प्रसारण होगा। आर्सेनल प्रीमियर लीग चैंपियन अपने टाइटल को बचाने के लिए सज हैं। द गनर्स 70 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर न्यूकासल यूनाइटेड से ब्रूनो गुमारेस के लिए तैयार हैं। गुमारेस भी आर्सेनल में जाना चाहता है। अभी कौन सा आर्सेनल का फर्स्ट चॉइस डिफेंसिव टारगेट है? जूलियन अल्वारेज द गनर्स का ड्रीम टारगेट है, पर अल्वारेज बार्सिलोना में जाना चाहता है।

0: आर्सेनल ने ग्रीस के इंटरनेशनल खिलाड़ी क्रिस्टियोस ज़ोलिस को साइन कर लिया है क्लब ब्रुज से 34 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। रियल मैड्रिड ओरेलियन चुआमेनी को मैनचेस्टर यूनाइटेड से बेचने के लिए तैयार हैं। द रेड डेविल्स एएस रोमा के मिडफील्डर मानु कुने और ब्राइटन के मिडफील्डर कार्लोस बालेबा को भी साइन करना चाहता है मिडफील्ड को कंसोलिडेट करने के लिए। वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड आज रोजनबर्ग के खिलाफ अपना प्री सीजन का मैच खेलेगा, फ्रेंडली मैच है। इस मैच के लिए 15 साल के युवा खिलाड़ी जे गैब्रियल को सीनियर स्क्वाड में रखा गया है। जे गैब्रियल प्रीमियर लीग का अंडर 18 प्लेयर ऑफ द सीजन बना था जब वो केवल 14 साल का था। पिछले हफ्ते फिनलैंड में रेक्साम ने 1-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था, मतलब रोजनबर्ग के खिलाफ ये दूसरा फ्रेंडली मैच है। प्रीसीजन फ्रेंडलीज में आर्सेनल खेलेगा जिरोना के खिलाफ 1 अगस्त को, फिर 5 अगस्त को रियल बेटिस के खिलाफ मैच, 9 अगस्त को बोरुसिया डॉर्टमुंड, 3 दिन बाद कोमो और 16 अगस्त को ट्रेडिशनल कम्युनिटी शील्ड, यह है मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। लिवरपूल के लिए 25 जुलाई को कल सन्डरलैंड के खिलाफ मैच है, 4 दिन बाद रेक्साम, 2 अगस्त को लीड्स, फिर 9 अगस्त को मोनाको और 16 अगस्त को कोमो के खिलाफ मैच, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड आज रोजनबर्ग, फिर 1 अगस्त को मैड्रिड, पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ मैच है 8 अगस्त को, 12 अगस्त को लीड्स और 15 अगस्त को एसी मिलान। यूईएफए यूरोपा लीग सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में कल कुछ मैच खेले गए। काराबाग 0 CSKA सोफिया 0, दिनामो केव 2 PAOK 3, हमाबी 1 आंदेलक 1, शेरिफ 0 मकाबी तेल अविव 5, ट्रोम्सो 0 राडेक क्रालोवे 1, बेसिकतास 1 मिडजिलान 0, सेंगालेन 2 बेनफिका 1, ट्वेंटे 1 फेरेनवारोस 2 और हाशडुक स्प्लिट 2 पाफोस 0। साइक्लिंग टू डे फ्रांस स्टेज 18 यानी 18वें चरण में कल इक्वाडोर के रिशा कारापाव की जीत हुई। लीडर तादेज पोगाचा अभी तक 4:32 से आगे हैं। क्रिकेट में मार्च महीने में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कल भारतीय टीम की पहली जीत हुई। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी की हाफ सेंचुरी रही। इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरी बनाने वाला सबसे जवान खिलाड़ी बना वैभव। मयंक यादव और प्रिंस यादव 2-2 विकेट ले पाए। और मॉरिशस में भी अगले हफ्ते से आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा शुरू होगा, इस पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते आपको फिर से याद दिला दें, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑन NBC 11 पर आप ये कॉमनवेल्थ गेम्स फॉलो कर सकते हैं, खासतौर पर फोकस हमारे एथलीटों पर। वीकेंड में भी बहुत कुछ होने वाला है और याद दिला दें कि खेल खिलाड़ी प्रोग्राम आज रात 8 बजे आप लोग देख पाएंगे NBC 3 भोजपुरी चैनल पर। इसमें हम फोकस करेंगे मॉरिशस स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स फॉर ऑल, साथ साथ में आपको वर्ल्ड कप फाइनल हाइलाइट्स भी दिखाएंगे और कुछ बातें करेंगे टेनिस को लेकर भी। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम डोंट फॉरगेट आज रात 8 बजे NBC 3 भोजपुरी चैनल पर। हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड, आई विल कैच यू दिस आफ्टरनून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
1: Thank you so much for the updates, Arvind ji. Have a wonderful day ahead and also have a wonderful weekend. वैसे 8:30 बजे तो हम मिलेंगे ही, of course, for the latest updates, again a recap.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: वो नहीं आने वाले, आने वाले, आने वाले, वो बेवफा, छलावटी, छलावटी, छलावटी।

0: बात है. व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग आप है. वैसे यहाँ पर लुभा का जन्मदिन है, 85 इयर्स के हुए. हैप्पी बर्थडे फॉर यू फ्रॉम संजय विजय अजय सैलेश रानी हंस हेम एंड ऑल लुभा फैमिली ऑफ सेबास्टोपोल. यहाँ पर हाई डियर वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर नीथू ऑफ पालमा का ट्रिबॉन हु सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन हु सेलिब्रेटेड एक्चुअली हर बर्थडे ऑन ट्यूजडे 21st of July. Wish her a very, very happy birthday with lots of happiness and good health. Hope she have a wonderful time. From Rajiv and Sabia, thank you so much.
1: Morning beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musti in the mix.
0: जावन फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. अरिजीत सिंह की आवाज निकिता गांधी. वैसे मिलते हैं उस पार्ट इन द सेकंड आवर आफ्टर द भोजपुरी समाचार. ओके जी, देन आफ्टर वर्ड्स आई गेट हियर सम रियली नाइस सॉन्ग सिलेक्शंस आपके लिए. ऊपर से इतने सारे गिफ्ट्स हैं आपके लिए, बस आपके मनोरंजन के लिए. जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती. मनीष मैं के साथ है सुबह के 9 बजे तक.

अपन घरी मिला ले जाए इ बखत फजर के 8 बजल बा। सब कोई की नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे की भोजपुरी समाचार सुना जा। ओगिस्तो अजायल पेरेज़ के नेतृत्व में आईएमएफ माने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एगो टीम काल बिफे के पोतली के ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात कर लन। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने के महानिदेशक रोहित रामनवाज भी शामिल रहलन। एकर उद्देश्य है कस्टम्स प्रक्रिया के मूल्यांकन करी के सेवा के दक्षता के बढ़ावे के ड्रग्स तस्करी अवैध उत्पाद और टैक्स से जुड़ल धोखाधड़ी से सीमा के आर जस्ती निमन सुरक्षा करी के। आईएमएफ ई बोलन की मॉरिशस के कस्टम्स विभाग अघी से ही निमन प्रदर्शन करता। फ्लाक इलाके में अब बर्जना लोगन खातिर एगो नवा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध बाती। काल बिफे के उद्घाटित करल गल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट के उद्देश्य है इलाका के रहे होला बर्जना लोगन खातिर चिकित्सा देखभाल के आर जस्ती सुलभ बनावे की। ये केंद्र आवत सप्ताह से शुरू हो जाए और पहल का चरण में 21 दिन काम करी। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी देश के कई गो हिस्सा में जलापूर्ति खातिर एगो नवा समय सारणी निर्धारित करलन। सेंट्रल प्लाटो इलाका एकर से जस्ती प्रभावित होला, कहे कि मुख्य जलाशय के जल स्तर में

चिंताजनक गिरावट होला, खासकर देश के सबसे बड़का जलाशय माने महोबाकुआ, जेकर जल स्तर गिर के लगभग 2.3% के भेरी पहुंच गल बाती। जैसा कि ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादन भी ई बात बोलन, पानी के भंडारण के बचाया खातिर सेंट्रल वाटर अथॉरिटी दैनिक आपूर्ति के घटा के

0: पानी देवल जाया। तो दूसर देश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग रूट्स के लेके जस्ती तनाव के बीच अमेरिका ईरान पर फेनों से हमला कर दिलक। अमेरिकी सेना ई बतैलन कि बीफे सांझ के बखत में ईरान के सैन्य ठिकाना पर ही नवा दौड़ शुरू कर रल गल। ई 13वा रात लगातार हमला होते जाता। तैक्रवे संगे हमने की भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान देवे खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Morning Beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musty, in the mix. Hey!

0: ऐसे 8:08 हुए हैं. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ योर मॉर्निंग बीट. आते हैं भोजपुरी बॉयज के पास साथ पोपरी. Here we go. What a wonderful start in this morning. Sending you lots of good vibes and lots of good energy. Also, have a good day ahead. Abhi ke liye mausam ka haal. Here we go.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, जबकि दोपहर को उत्तर पश्चिम दिशा में थोड़े से बादल घिराएंगे. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठाएंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार. तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच. तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. आज सूर्योदय 6:43 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर.
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: La foire Belbel Kadi retourne Côte Winners.
6: Belbel Kadi de retour Côte Winners. Du 24 juillet au 6 août uniquement. Les 340 grammes de Chicken Franks Winners à 29,95 € et du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet seulement, la brique d'un litre de lait UHT Candia à 49,95 €. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
7: On est tous winners.
1: RM2
4: Radio Musti.

0: यार इतने सारे गिफ्ट्स, इतने सारे यू नो मौके दिए जा रहे हैं आपको खुश करने के लिए. यहाँ पर वेलकम बैक. अभी के लिए लेट एक छोटा सा ब्रेक. आगे रुकती रानी वेटिंग फॉर यू फॉर पार्टिसिपेशन एंड अ बॉलीवुड इक्वेशन फॉर यू टू पार्टिसिपेट एंड विन. इतने सारे गिफ्ट है अभी के लिए बता देती हूँ. आई गेट हियर अ चांस टू विन अ गिव वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफ अ टीयू बाय राजस्थान हैंडलूम हाउस. यस, लेते हैं अभी के लिए छोटा सा ब्रेक. देन स्टे वेल कनेक्टेड. आई गेट अ क्वेश्चन, एक्चुअली अ बॉलीवुड क्वेश्चन फॉर यू टू पार्टिसिपेट एंड विन.
1: OMG
2: रेडियो मस्ती.
3: Se détousser tousser, Bella. Papa m'a dit c'est un crunchy deals là. Bitch, chez KFC c'est ce crunchy deals. Un Kentucky Joe Burger Box avec ce de Chicky Burger et un large fries pour 385 roupies.
4: Crunchy deals KFC. C'est prix maxi taste. KFC.
1: RM2
2: Radio Musty.

wish you a wonderful, wonderful drive ahead, a safe drive and a patient drive. ऐसे पता चला है कि you know from Tribeca towards Reggie वहाँ पर huge traffic है और पता जब किया हमने तो एक गाड़ी खराब हो गई थी उसकी वजह से थोड़ी सी traffic में देरी आ रही है आपको. A good beat for your morning show.

0: Radio Musty.
1: चलिए आपके लिए ये गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर टू बाय राजस्थान हैंडलूम हाउस आपके नाम हो सकता है। राजस्थान हैंडलूम हाउस अबिदला का इकिया पेपर की ओर से ये गिफ्ट वाउचर आपके नाम। तो अगर आप हमें सही जवाब दें फॉर द बॉलीवुड इक्वेशन, वैसे अभिजीत तो हमारे देश में ही है, हम कह सकते हैं क्योंकि कल तो कल कंसर्ट शुरू हो जाएगी 7:30 बजे शाम को। जी हाँ, अभी आई गेट हियर दिस इक्वेशन, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। यानी कि एक इक्वेशन है, आपको सही जवाब देना है कि कौन सी मूवी हम ढूंढ रहे हैं, कौन सी मूवी हम ढूंढ रहे हैं। एंड यू जस्ट टेल मी सैफ अली खान प्लस अक्षय कुमार प्लस काजोल प्लस दिलीप सेन समीर सेन प्लस अभिजीत भट्टाचार्य प्लस 1994, कौन सी मूवी आ जाती है दिमाग में? भेजो सही जवाब ऑन दिस नंबर 5491294 पर फिर से बता देती हूँ। ओके, दोहरा देती हूँ, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, काजोल, दिलीप सेन, समीर सेन प्लस अभिजीत भट्टाचार्य। बताइएगा कौन सी मूवी हम ढूंढ रहे हैं, प्लस ऑफ कोर्स नॉट फॉरगेट 1994। ज्यादा दे दिया हमने, ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। बताएगा विद फुल नेम एंड एड्रेस के साथ पार्टिसिपेट विद अस हियर ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती एंड स्टैंड अ चांस टू विन वन गिव वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफ टू यू बाय राजस्थान हैंडलूम हाउस।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जैसे मैं जब तैयार करी थी मैं अपने जो बॉलीवुड इक्वेशन को मैं कह रही थी यार सुबह सुबह किसका दिमाग चलेगा किसको पता चल जाएगा ये किस मूवी को ढूंढ रहे हैं इतने सारे अच्छे जवाब मिले हैं सही जवाब मिले हैं कुछ गलत जवाब मिले हैं कोई बात नहीं अच्छा लगता है जब गलत जवाब भी मिल जाता है मुझको अच्छा लगता है ना क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पास है ये सही जवाब लेकिन हाँ आपके पास सही जवाब भी है यहाँ पर इतनी जल्दी आपने भेज दिया वेरी

0: सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ मूवी. ओके, बॉलीवुड क्वेश्चन को फिर से ढोला देते हैं. सैफ अली खान, अक्षय कुमार, काजोल, दिलीप सेन, समीर सेन, अभिजीत भट्टाचार्य एंड 1994 मूवी है ये दिल लगी. यस, एंड हमारे साथ हमारी लकी विनर है, उनका नाम है मंजू पांडे. कंग्रेचुलेशंस. क्या बात है, सुबह सुबह आपने खेला हमारे साथ. एंड यू आर द फर्स्ट वन विद द राइट आंसर, फर्स्ट पार्टिसिपेटेड विद अस. एंड यस, यू वन दिस वन गिव वाउचर वो 500 रुपीज ऑफ टू बाय राजस्थान हिंदू हाउस. कंग्रेचुलेशंस.
1: Chill, I should drop it low, man.

0: ओले ओले एक टाइम ऐसा आ गया कि हर कोई कहता था भटूरे कहाँ पे हैं छोले छोले छोले कोई कहता इतना काम किया तूने थोड़ा सोले सोले सोले ओ माय गॉड हमारे संग होले
1: होले कैसे आ जाता है?
0: कभी आता है देखो ऐसी बात है अभी मॉर्निंग में इतने सारे आइडियाज भाग रहे इधर उधर राउंड अबाउट पे. अच्छा वी वर टॉकिंग अबाउट रिबेका से आते हुए टुवर्ड्स रेजुई तो वहां पर ह्यूज ट्रैफिक जाम था लेकिन वो रीजन ये था कि गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी.
1: मुझे
0: वो सॉर्टेड आउट हो गया.
1: तुम्हें कैसे पता? सुकार ने फोन किया.
0: हां उन्होंने बता दिया.
1: हां बता दिया.
0: हां लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है. थिंग्स आर अन कंट्रोल. और जब स्कूल हॉलीडेज है तो ट्रैफिक की सिचुएशन बहुत ही कमाल की. जैसे मौसम जैसे हमारे गाने फ्री फ्लो मजे लो.
2: Morning beat.
3: Oh God! One more remix.
2: A good beat for your morning show.
4: RM2 Radio Musty in the mix.

0: हाय नमस्कार दिस इज अभिजीत भट्टाचार्य आप सुन रहे हैं मुझे इन एट ऑन रेडियो मस्ती मस्ती भरी मस्ती
1: मॉर्निंग बीट
2: ओह गॉड वन मोर रिमिक्स
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.

0: RM2, Radio Musty in the mix. Sports News.
1: राइट, अभी चलते हैं एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाते। नहीं, स्पोर्ट्स की बात करें लेकिन अच्छा है कि आप सुबह उठकर थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन जो नहीं उठ पाते ना उनके लिए एक बार फिर से स्पोर्ट्स की अपडेट।
2: मुझे लगा आप हमारी बात कर रहे हैं।
1: नहीं, नॉट रियली। वैसे आपको याद दिला दें कि NBC 11 पर आज से ही 11 बजे होगा लाइव ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, और फिर ये सिलसिला चलने वाला है सैटरडे को भी, संडे को भी। आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन अरविंद एक बार फिर से वापस गुड मॉर्निंग।
3: Good morning
4: aapko, good morning RMQ listeners, the latest from the sports world. Glasgow mein Commonwealth Games yani Rashtramandal khelon ka aupcharik udghatan samaroh kal laga. Ovo Hydro Indo Arena mein spectacular aitihasik opening rahi. King's Charles III aur Queen's Camilla ki upasthiti mein opening hui. 3000 athletes, 215 gold medals, 10 khel honge. आज से खेल शुरू, बाउल्स और पारा बाउल्स से फिर 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग और बॉक्सिंग होंगे। एमबीसी 11 पर ये खेल आप देख पाएंगे, हमारे एथलीटों पर खास प्रसारण होगा। आर्सेनल प्रीमियर लीग चैंपियन अपने टाइटल को बचाने के लिए सज है। The Gunners 70 million पाउंड स्टर्लिंग पर न्यूकासल यूनाइटेड से ब्रूनो गुमारेस के लिए तैयार हैं। गुमारेस भी आर्सेनल में जाना चाहता है। अभी कौन सा आर्सेनल का फर्स्ट चॉइस डिफेंसिव टारगेट है? जूलियन अल्वारेस द गनर्स का ड्रीम टारगेट है, पर अल्वारेस बार्सिलोना में जाना चाहता है। आर्सेनल ने ग्रीस के इंटरनेशनल खिलाड़ी क्रिस्टियोस जोलिस को साइन कर लिया है क्लब ब्रूज से 34 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। रियल मैड्रिड ओरेलियन चुआमेनी को मैनचेस्टर यूनाइटेड से बेचने के लिए तैयार हैं। द रेड डेविल्स एएस रोमा के मिडफील्डर मानु कुने और ब्राइटन के मिडफील्डर कार्लोस बालेबा को भी साइन करना चाहता है मिडफील्ड को कंसोलिडेट करने के लिए। वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड आज रोजनबर्ग के खिलाफ अपना प्री सीजन का मैच खेलेगा, फ्रेंडली मैच है। इस मैच के लिए 15 साल के युवा खिलाड़ी जे गैब्रियल को सीनियर स्क्वाड में रखा गया है। जे गैब्रियल प्रीमियर लीग का अंडर 18 प्लेयर ऑफ द सीजन बना था जब वो केवल 14 साल का था। पिछले हफ्ते फिनलैंड में रेक्साम ने 1-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था, मतलब रोजनबर्ग के खिलाफ ये दूसरा फ्रेंडली मैच है। प्रीसीजन फ्रेंडलीज में आर्सेनल खेलेगा जिरोना के खिलाफ 1 अगस्त को, फिर 5 अगस्त को रियल बेटिस के खिलाफ मैच, 9 अगस्त को बोरुसिया डॉर्टमुंड, 3 दिन बाद कोमो और 16 अगस्त को ट्रेडिशनल कम्युनिटी शील्ड, ये है मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। लिवरपूल के लिए 25 जुलाई को कल सन्डरलैंड के खिलाफ मैच है, 4 दिन बाद रेक्साम, 2 अगस्त को लीड्स, फिर 9 अगस्त को मोनाको और 16 अगस्त को कोमो के खिलाफ मैच, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड आज रोजनबर्ग, फिर 1 अगस्त को मैड्रिड, पेरिस सैं जर्मे के खिलाफ मैच है 8 अगस्त को, 12 अगस्त को लीड्स और 15 अगस्त को एसी मिलान। यूईएफए यूरोपा लीग सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में कल कुछ मैच खेलेंगे। काराबाग 0 CSKA सोफिया 0, दिनामो केव 2 PAOK 3, हमाबी 1 अंडेलक 1, शेरिफ 0 मकाबी तेल अविव 5, ट्रोम्सो 0 राडेक क्रालोवे 1, बेसिक्तास 1 मिडजिलैंड 0, सेंगालेन 2 बेनफिका 1, ट्वेंटे 1 फेरेनवारोस 2 और हाशडुक स्प्लिट 2 पाफोस 0। साइक्लिंग टू डे फ्रांस स्टेज 18 यानी 18वें चरण में कल इक्वाडोर के रिशा कारापाव की जीत हुई। लीडर तादेज पोगाचार अभी तक 4:32 से आगे हैं। क्रिकेट में मार्च महीने में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कल भारतीय टीम की पहली जीत हुई। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी की हाफ सेंचुरी रही। इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरी बनाने वाला सबसे जवान खिलाड़ी बना वैभव। मयंक यादव और प्रिंस यादव 2-2 विकेट ले पाए। और मॉरिशस में भी अगले हफ्ते से आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा शुरू होगा, इस पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते आपको फिर से याद दिला दें, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑन NBC 11 पर आप ये कॉमनवेल्थ गेम्स फॉलो कर सकते हैं।

0: खास तौर पर फोकस हमारे एथलीटों पर। वीकेंड में भी बहुत कुछ होने वाला है और याद दिला दें कि खेल खिलाड़ी प्रोग्राम आज रात 8 बजे आप लोग देख पाएंगे MBC3 भोजपुरी चैनल पर। इसमें हम फोकस करेंगे मॉरिशस स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स फॉर ऑल, साथ साथ में आपको वर्ल्ड कप फाइनल हाइलाइट्स भी दिखाएंगे और कुछ बातें करेंगे टेनिस को लेकर भी। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम डोंट फॉरगेट आज रात 8 बजे MBC3 भोजपुरी चैनल पर। हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड, आई विल कैच यू दिस आफ्टरनून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद, सारी स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए। और हम बात करते हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। सो MBC11 पर रात से यानी कि फ्राइडे 24th of July 11 बजे से आप देख पाएंगे ये इवेंट लाइव, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये सिलसिला चलेगा सैटरडे को भी संडे को भी, साथ जुड़े रहिए, अपडेट्स मिलती रहेंगी, ऐसे ही म्यूजिक एंड फुल ऑन मस्ती।

0: वी आरक्षण फॉर यू मौका, वैसे मौका दिया जा रहा है आप सभी को पहचाने के लिए एक साउंड. जी हाँ, यहाँ पर हम खेल रहे हैं आपके साथ ऑन 549 and 1294 पर. यू कैन जस्ट सेंड अस द राइट आंसर ऑन दिस नंबर. यहाँ पर स्टैंड चांस टू विन वन टिकट फॉर द गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कंसर्ट दिस सैटरडे 25th of July 2026 को शाम के 7:30 आप SBICC 5. जी हाँ, आप हमारे साथ यू ही जुड़े रहिए. हम गाना तो नहीं, लेकिन एक जो वाक्य है, सेंटेंस है फ्रॉम अ सॉन्ग, क्या आप बता पाएंगे बस कुछ वर्ड्स सुनने के बाद, ये आपके लिए चैलेंज है 549 and 1294 पर. अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं 3 बजे से पहले टू कलेक्ट योर टिकट, यू कैन प्ले ऑफ कोर्स. सुनिए सुनिए सुनिए ध्यान से.
1: हे, क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी.
2: Radio Musti.
3: Et n'en cousi qui dit, maléa pénal odeur. In les temps pour qui nous prend soin de la santé. Et c'est pour ça que SICOM fin développe un nouveau assurance qui appelle SICOM Wellness Plan. Sa plan là inclut un test médical régulier et gratuit qui vous aide ou détecter un problème grave bien en avance. Et SICOM paye ou la somme assurée tout de suite en cas de diagnostic là, CAI. Ça vous permet ou faire ou traitement avec un esprit positif. Et si vous ne faites aucune réclamation jusqu'à la fin ou contrat, SICOM rembourse ou somme assurée totalement. Plus d'informations sur le SICOM Wellness Plan, contactez-nous au 203 84 01, visitez-nous au SICOM.mu ou contactez un ou ben représentant. Conditions applicables. SICOM opère sous licence de la FSC.
4: SICOM Group, a lifetime commitment.
2: RM2
5: Radio Mustang.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: थोड़ी देर पहले हमने चलाया था ये साउंड, आपको बस गैस करना था कि ये कौन सा गाना हम ढूंढ रहे हैं ऑन 549 and 1294 पर।
3: हे, क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी?
2: Yes, only this bit and कितना आसान था। I get here the right answer and हमारे lucky winner बन चुके हैं दिव्या रामकरण। Congratulations, आप रहते हैं बुबासर। जी हाँ, अपनी है विजेता। टुडे बिफोर 3 पीएम प्लीज कम एंड कलेक्ट योर वन टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव कंसर्ट दिस सैटरडे 25 जुलाई 2026 को शाम के 7:30 बजे से लेकर रात देर तक आप एंजॉय कर पाएंगे एट SBICC पाई। स्टेप इन टू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया, रिलीव द अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट रीडिफाइंड एक्चुअली द बॉलीवुड गोल्डन एरा। यस, एंजॉय an evening of timeless melodies, legendary hits and pure musical magic. Tickets start as from 850 and available at moticket.mu and resotayo. For more details you can call on 466-9999. Have a wonderful day. Congratulations again, Divya Ramkaran.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगी खड़ाबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिय या sikkim.mu पर जाइय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
5: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: आए मिलते हैं अभी उदय से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अभी।
1: नमस्कार वेदिता, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब, दर्शकगण को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। ऑगस्टो अजाएल पेरेस के नेतृत्व में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक प्रतिनिधिमंडल ने कल पोर्टलुई स्थित न्यू ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवाज भी शामिल हुए। इस दौरे का उद्देश्य है कस्टम्स प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, परिचालन लागत को कम करना और ड्रग तस्करी, अवैध उत्पादों तथा टैक्स से जुड़ी धोखाधड़ी से सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करना। IMF का मानना है कि मॉरिशस का कस्टम्स विभाग पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मॉरिशस अफ्रीका की सेवा में एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र यानी कि फाइनेंशियल रीजनल फाइनेंशियल हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए TDB यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने कल एबेन में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक रणनीतिक साझेदारी है जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवा क्षेत्र में कौशल विकास और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। फ्राक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय सारणी निर्धारित किए हैं और सेंट्रल प्लेटो इलाके इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसकी मुख्य वजह जलाशयों के जल स्तर में चिंताजनक गिरावट, विशेष रूप से देश का सबसे बड़ा जल

आशय मोहवाक्वा जिसका जल स्तर 43% के करीब तक पहुंच गया है, जैसा कि ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन ने भी कहा। पानी के भंडारण को बचाने की दिशा में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने दैनिक आपूर्ति घटाकर केवल एक ही समय कर दी है, यानी कि सुबह के 3 बजे से रात के 8 बजे के बीच कुछ इलाकों में प्रतिदिन लगभग 6 घंटे तक पानी दिया जा रहा है।

0: कि अमेरिका ने भारत के आयात से होने वाले सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला आज से लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने फोर्स लेबर से बने सामान के आयात को लेकर 60 देशों पर कार्रवाई की। आपको बताते हैं कि भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को 10% टैरिफ वाले समूह में रखा गया है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। अभी को दीजिए अनुमति, नमस्कार और आदाब।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: अरे ये फ्राइडे तक हम पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग, 9:09 हुए हैं। मेक अ विश।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: जी हाँ, इट्स योर RM2 रेडियो मस्ती। स्वागत है आपका वंस अगेन। इट्स द मिनी और इट्स आवर में लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस अवेटिंग है आपके लिए। गेम्स होंगे, हॉरोस्कोप होंगे और लाइफस्टाइल टिप्स भी। तो आप यहीं पर रहना है कनेक्टेड टू योर RM2 रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And as promised, it's game time and as winning prize, aapko milne wala hai ticket to the 90s. Golden Era 2 featuring Abhijit Bhattacharya. Lekin aap game khelne se pehle, aap game khelna zarur. Agar aap 3 baje se pehle MBC अपने आईडी कार्ड के साथ आ सकते हैं टिकट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो क्या है कि कल ही है कंसर्ट, वरना आप टिकट खो सकते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आपको तो पता ही है कल है कंसर्ट, आपको बताना है कि मॉरिशस में किस जगह हो रही है कंसर्ट, आपको बताना है कहां पर हो रहा है कंसर्ट इन मॉरिशस। 5499 1294 पर भेजिए अपने जवाब।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: कभी कभार बेफिक्र होना भी जरूरी है क्योंकि लाइफ का पर्पस ही क्या है अगर हम दिन भर चिड़चिड़े या रूठे हुए रहेंगे। अरे खुल के हंसो यार, दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहो, उसी में फुली गुड वाइब्स पैक्ड है। वैसे गेम ऑन गोइंग, हर क्वेश्चन था कि अभिजीत कंसर्ट करने के लिए तो आ रहा है मॉरिशस, लेकिन कहाँ पर? एंड जवाब है SBICC पाए, और जिन्होंने सही जवाब दिया है वो बहुत है, इसलिए लकी ड्रॉ करना पड़ा और नाम आया। एंड ये सन्नाम आया रुद्रानी जी का, जो कि होसबेल के रहने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस डी, आपको मिल रहा है टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टॉर। एंड टिकट कलेक्ट करने के लिए डोंट फॉरगेट कि आज ही आना है MBC ID कार्ड लेकर 3 बजे से पहले।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: मैसे ग्रहों की चाल हर दिन कुछ नया संकेत देती है। ये जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज आपके अंदर ऊर्जा उत्साह भरपूर मात्रा में रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन परफेक्ट है। बातचीत में मधुरता बनाए रखें, इससे रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। लकी कलर आज आपका है लाल और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज धैर्य और समझदारी से लिया गया हर निर्णय आपके हित में रहेगा। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होगा। लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी वाणी और बुद्धि दोनों प्रभावशाली रहेंगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। अनावश्यक चिंता से आपको दूर रहना है और अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना है। लकी कलर आपका है पीला और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बूस्टअप करेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना रुचि है। लकी कलर आपका है सफेद और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपके जो नेतृत्व गुण है सबका ध्यान आकर्षित करेंगे। मेहनत का उचित फल मिलने के योग भी है। अपने फैसलों पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। लकी कलर आपका है सुनहरा और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज योजना बनाकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात या फिर बातचीत मन को प्रसन्न करेगी। लकी कलर आज आपका है हल्का हरा और नंबर है 7।
2: लीब्रा तुला राशि,
1: आज संतुलन और शांत स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिल सकती है। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। लकी कलर आपका है गुलाबी और नंबर है 8।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का दिन है। काम में प्रगति के योग बन रहे हैं। क्रोध से बचकर धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 3।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज सीखने और कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। यात्रा के नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। लकी कलर आपका है नारंगी और नंबर है 4।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज परिश्रम का फल मिलने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा। लकी कलर है नीला और नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज है वो आपको नए अवसर दिला सकते हैं। मित्रों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचिए। लकी कलर आपका आसमानी और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज आपकी जो सिंपैथेटिक नेचर है वो उससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। अधूरे काम पूरे करने के लिए दिन भी अनुकूल है, उचित है। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 12।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

कविता लिखनी छोड़ दी थी, लेकिन कुछ दिन हुए तो ऐसा लगा जैसे सोए हुए जज्बात जाग उठे, प्यार की उमंगें मचलने लगी है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: शाम तो नहीं हुआ है लेकिन समय तो फ्राइडे की तरह हो गया है भाई। आप लोगों का साथ हो और चिल वाइब्स हो तो मस्त समय है। कनेक्टेड हो चुके हैं हमारे साथ अब्दुल जी और सायरा बानू जी, और वो काम पर है, वो विश कर रहे हैं आप सभी को अ वेरी नाइस डे। एंड आपको भी हम विश करते हैं बों को खार्जा। साथ दे रही है दीपा जी जो कि न्यूकोव की रहने वाली है, थैंक यू कनेक्टेड रहने के लिए। और वो मांग रही है प्यार सा गाना अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तो आपके लिए चलाएंगे गाना जरूर अभी के लिए। नेक्स्ट गाना टू ऑल दोज जो अभी कनेक्टेड हो चुके हैं आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ।

0: listening to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning, subah ke 10 baje hai. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे अभी नमस्कार.
6: नमस्कार निर्मली. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. ऑगस्टो अजाएल पेरेज के नेतृत्व में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोतली स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की. इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवाज भी शामिल हुए. इस दौरे का उद्देश्य कस्टम्स प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, परिचालन लागत को कम करना और ड्रग तस्करी, अवैध उत्पादों तथा टैक्स से जुड़ी धोखाधड़ी से सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करना. IMF का मानना है कि मॉरिशस का कस्टम्स विभाग पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. उनकी सिफारिशों से इनकी कार्य कुशलता और सेवा की गुणवत्ता में अधिक सुधार होने की उम्मीद है. ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत पर तेजी से पूरी स्वतंत्रता के साथ और ठोस सबूतों के साथ कार्रवाई हो. IPCC यानी कि इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन ने नए अध्यक्ष सतीश फुगु के सामने ये एक मुख्य चुनौती है. पूर्व अटॉर्नी जनरल और पूर्व मंत्री रह चुके सतीश फुगु ने इस सप्ताह 4 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली. IPCC मुख्य रूप से पुलिस बर्बरता, अधिकार के दुरुपयोग और हिरासत में होने वाली मौतों के आरोपों की जांच करता है. हालांकि कुछ जांचों को पूरा होने में कई साल लग चुके हैं. ऐसे में मामलों के निपटारे में तो तेजी कैसे लाए जाए, शिकायतकर्ताओं को बेहतर जानकारी कैसे दी जाए और जनता का भरोसा फिर से कैसे कायम किया जाए, सतीश फगु आज सुबह लिंटरव्यू डे ला मैटिनल कार्यक्रम में हमारे सहयोगी एड्रियन वालिया के मेहमान थे. अब बात करते हैं IT सेक्टर के पूर्व मंत्री दीपक बालगोबिन के बारे में, जहां पर फोर टैपिंग जांच के सिलसिले में उन्हें समन भेजा गया है. याद दिला दें कि इस मामले में CCID की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख और पूर्व ACP लील राम दियाला को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. CCID का आरोप है कि लील राम दियाला ने प्रेस्ट सोल ब्रांड के एक लिसनिंग टैपिंग डिवाइस का एक्सेस कोड देने से इनकार कर दिया था. आशंका है कि इस उपकरण का इस्तेमाल बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था, जिसके कुछ अंश मुस्तास लीक्स नाम के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग के सामने आए हैं. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारत में मानसून की भारी बारिश जारी है. दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं. शुक्रवार को राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई. उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं. शुक्रवार को 54 जिलों में बारिश का अलर्ट है. असम में बाढ़ से 6.53 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. तो ये थी अब तक की खबरें. आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद. जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार नंबर F

0: Cremation today at 1 PM. Railroad balance Suriname. Railroad balance Suriname. 79 साल की 79 years old की श्रीमती सावित्री राम तोहल. श्रीमती सावित्री राम तोहल पैदाशी नाम सिरतन और जिन्हें सब लोग साबित के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे उन्हीं के घर रॉयरोड द बैलेंस सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. ऐसे भी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Crazy in Love और TMO गाना आपके लिए, क्योंकि भाई जिंदगी में रोमांस का थोड़ा स्पाइस तो बनता है। वैसे अभी आप सेटल्ड हो गए होंगे, ट्रैफिक के शोर शराबे से बहुत दूर ऑफिस भी पहुंच गए होंगे कब का, तो आपको विश करते हैं मुंह को आज और ऐसे ही वाइब्स को ऑन गोइंग रखते हैं। इट्स नर्मनी इन योर मस्ती मॉर्निंग RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Yeah.
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।

0: tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: Well, fashion की बात करें तो भाई ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आज फ्राइडे की वजह से मूड थोड़ा फंकी हो गया है तो स्टाइल भी फंकी होना चाहिए। अगर आपके पास है डंगरीज, यानी कि उसे क्रियोल में बोलते हैं सालोपेत, तो आज उन्हें वार्डरोब से बाहर निकालिए। अंदर आप कुछ बेसिक व्हाइट या फिर ब्लैक टी शर्ट या फिर कुछ फ्लोई डालें, तय कीजिए स्नीकर्स के साथ एक कूल कैप और एक फंकी सनग्लासेस ऐड कीजिए। बस बिना ज़्यादा मेहनत के आपने बना लिया लुक जो है स्टाइलिश और सुपर कम्फर्टेबल।
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: Join the RM2 team this Saturday, 25th of July, for a blood donation event at SBM FLAC, organized by SBM. RM2 will be live as from 10 a.m. to noon. Join us for a good cause.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दोस्तों आज है इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे और सेल्फ केयर का मतलब होता है स्पा या शॉपिंग नहीं, खुद का ख्याल रखना, अपने शरीर और मन दोनों को समय देना ही असली सेल्फ केयर होता है। तो आइए आज कुछ छोटी सी आदतें शेयर करती हूँ जो आपके हर दिन को बेहतर बना सकती है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड फॉलो करें, लेकिन अगर हो सके तभी करना। ये तो आप जानते ही हैं, पहला टिप कि दिन की शुरुआत एक ग्लास पानी से करना चाहिए। आपने तो पी लिया होगा तो मैं टिक डालती हूँ। दूसरा टिप ये है कि रोज कम से कम 20 या 30 मिनट आप चले या फिर हल्का व्यायाम करने की आदत डालिए। इससे क्या होता है, आपका कोर ज़्यादा मजबूत होता है और अगर आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो आप खूब विटामिन सी के फलों को कंज्यूम कीजिए। सब चीज़ का बैलेंस अगर हो ना तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और आप अपना ख्याल अच्छे से रख पाओगे एंड आपको हेल्दी देखते हुए हम भी खुश रहेंगे। तो आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा 5499124 पर एंड और टिप्स के साथ जल्द ही वापस आएंगे गानों के बीचों बीच में।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे को हम आज मना रहे हैं इस फ्राइडे को, और ये जरूरी नहीं है कि बस स्पा या फिर शॉपिंग से हम अपने आप को खुश रखें. इट मीन्स डूइंग द हार्ड वर्क इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग. बहुत से लोग कहते हैं कि जिम जाना है, बॉडी बनानी है, लेकिन वो बनता है कंसिस्टेंसी से. लेट्स फेस इट गाइस, अगर आपने 3 महीने के लिए लॉक इन कर लिया, डाइट फिक्स कर लिया, एक्सरसाइज ऑन टाइम कर रहे हो, पानी का इंटेक भी सही है, देन आपको अपने गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है. तो फोन से नजर हटाइए और फोकस कीजिए. निर्मनी तो यही पर है, गानों के जरिए सपोर्ट करते रहेंगे आपको आपके ही आरएम2 वीडियो मस्ती पर. लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Mega promo code quality déco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Prix cassé, low lavoir. La lumière moderne, prix soc.

0: की देखो।
1: तो हर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगी खराबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिय या sikkim.mu पर जाइय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
3: RM2
4: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Din ke 11 baje hai. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे अभी नमस्कार
4: नीलमणि श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मॉरिशस अफ्रीका की सेवा में एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र यानी कि रीजनल फाइनेंशियल हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए TDB यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने कल एबन में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक रणनीतिक साझेदारी है जिसका मुख्य उद्देश्य है वित्तीय सेवा क्षेत्र में कौशल विकास और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। IT सेक्टर के पूर्व मंत्री दीपक बालगोबिन को फोन टैपिंग जांच के सिलसिले में समन भेजा गया है। याद दिला दें कि इस मामले में CCID की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख और पूर्व ACP लीलराम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। CCID का आरोप है कि लीलराम दियाल ने प्रेस्ट सोल ब्रांड के एक लिसनिंग टैपिंग डिवाइस का एक्सेस कोड देने से इंकार कर दिया था। आशंका है कि इस उपकरण का इस्तेमाल बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था, जिसके कुछ अंश मुस्तास लीक्स नाम के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में सामने आए हैं। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नई समय सारिणी निर्धारित की है। सेंट्रल प्लेटू इलाके इसी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसकी मुख्य वजह जलाशयों के जलस्तर में चिंताजनक गिरावट, खासकर देश का सबसे बड़ा जलाशय मोहवाक्वा जिसका जलस्तर गिरकर लगभग 43% के करीब पहुंच गया है, जैसा कि ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादन ने भी कहा है। पानी के भंडार को बचाए रखने के लिए CWA ने दैनिक आपूर्ति घटाकर केवल एक समय कर दी है, यानी कि सुबह 3 बजे से रात के 8 बजे के बीच कुछ इलाकों में प्रतिदिन लगभग 6 घंटे ही पानी दिया जा रहा है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज से लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने फोर्स्ड लेबर से बने सामान के आयात को लेकर 60 देशों पर कार्रवाई की है। अमेरिका ने इन देशों पर 10 से 12.5% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को 10% टैरिफ वाली समूह में रखा गया है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। Sir, it was hot street Ulier 4 bone mein. Sir, it was hot street Ulier 4 bone mein. 53 saal ki, 53 years old ki, Shrimati Tazina Ganga Bisun. Shrimati Tazina Ganga Bisun, paidaishi naam Rup Chan, aur jinhe sab log Veenu ke naam se bhi jante the, unki mrityu ho gayi hai. Unki arthi, aaj dopahar ke 2:30 baje, unke pati Shri Swaraj Dadu Ganga Bisun ke ghar, सर एडवर्ड हॉट स्ट्रेट उलिये कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स के श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 2:30 PM। गजाधर स्ट्रीट स्टैनली रोजल में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री मुथु कर्पन जिन्हें सब लोग कादरेस के नाम से भी जानते थे और

जो लाशमिया कंपनी के पूर्व माली थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के 2:30 बजे उन्हीं के घर गाजादा स्ट्रीट स्टैनली रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमा होते मोहुश किशमिशान भूमि ली जाए।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: ग्यारह बजकर 10 मिनट से वेलकम बैक मस्ती मॉर्निंग के तीसरे और आखिरी आओ में। एंड आपके लिए इस आओ में भी टिप्स वेट कर रही है, मैसेजेस भी पढ़ना बाकी है। तो अगर आपके पास कोई डेडिकेशन मैसेजेस है 5499-1294 पर हमें भेजिएगा जरूर।
2: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: एंड वैसे इट्स 11:11, मेक अ विश।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: और हाँ दोस्तों, सेल्फ केयर की बात है कंटिन्यूज, एंड सेल्फ केयर सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी शुरू होता है। तो उसके लिए अनदर टिप है आपके लिए, एंड वो है कि हर दिन अपनी थाली में एक सीजनल फ्रूट या फिर हरी सब्जी जरूर शामिल कीजिएगा। वो क्या है कि छोटी छोटी हेल्दी चॉइसेस ही बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। एंड अगर हो सके तो रोज 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश आप कीजिए। अच्छी नींद से शरीर ही नहीं दिमाग भी फ्रेश रहता है और पूरा दिन एनर्जेटिक होके गुजरता है। एंड अगर अभी आपको नींद आ रही है, इसका यही मतलब है कि आप खुद को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो पानी का बॉटल उठाइए और हाइड्रेट कीजिए खुद को।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चुप चुप के नहीं बल्कि ओपनली हर दिन अपने आप को मिरर में देखकर मुस्कुराइए। ये टिप हर कोई भूल जाता है लेकिन इट एक्चुअली वर्क्स। अगर आप वो टाइप के इंसान हो जो कभी कभार कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, ये एक्सरसाइज आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही होता है, बस बाहर लाने की देरी होती है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिन को और खूबसूरत बना देती है, तो अपने आप से स्माइल कीजिए। वेल लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हो तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378982।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: 11:46 फ्राइडे का दिन है और रोशनी जी साथ ही दे रही है सुबह से मस्ती मॉर्निंग में. और उनका मैसेज आया है, फरमाइश है उनकी कि लापता लेडीज मूवी का एक गाना हो जाए. अरे आप क्रिस्टल बोल में देख रही थी क्या? आपको कैसे पता चला कि नेक्स्ट गाना उसी मूवी का है? एंड क्या पता शायद आज आपका लकी डे है. एंड वैसे RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहिए क्योंकि गेम्स होने वाले हैं जल्द ही. क्या पता इस बार भी आप लकी हो जाए.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: यही पूरा टाइम हो चला है जाने का. मुझे इजाजत दीजिए, खुद का ख्याल रखिए, दिल से मुस्कुराना ना भूलिएगा. जिंदगी के दौर में सबसे जरूरी इंसान आप खुद हैं. तो मैंने मनी मिलूंगी फिर आपसे जल्द ही. तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए. नमस्कार, गुड डे एंड हैप्पी इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे टू यू वंस अगेन.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio.

0: रेवे के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल का अधिक सुलभ बनाना। ये केंद्र अगले सप्ताह से शुरू होगा और शुरुआती चरण में सप्ताह के एक दिन ये काम करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की क्रमिक भर्ती के साथ ही यहां कंसल्टेशंस यानी जांच की सुविधा सप्ताह में 4 से 5 दिन उपलब्ध कराई जाएगी। मॉरिशस अफ्रीका की सेवा में एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र यानी रीजनल फाइनेंशियल हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए TDB यानी ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने कल इबेन में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय निर्धारित किए हैं। सेंट्रल प्लाटो इलाके इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसकी मुख्य वजह जलाशयों के जल स्तर में चिंताजनक गिरावट है। विशेष रूप से देश का सबसे बड़ा जलाशय मोवाक्वा, जिसका जल स्तर गिर कर लगभग 43% के आसपास पहुंच गया है। पानी के भंडार को बचाए रखने के लिए CWA ने दैनिक आपूर्ति घटा करके वरिक समय कर दी है। विदेशी खबरों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि गुरुवार शाम को ईरान के सैन्य ठिकानों पर नया दौर शुरू हुआ। यहां 13वीं रात लगातार हमले किए गए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Retro Rhythm.
4: RM2 Radio Musty.

इतने प्यार से पुकारा, दिल से पुकारा है आई वन, आपकी नीतू चली आई आपके पास, आपके और करीब, आपके दिल में, आपके घर में। घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:07 हुए हैं। गुड आफ्टरनून, प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज है फ्राइडे 24th of July ऑलरेडी, सो व्हाटएवर यू माइट बी, लंच टाइम, बोन अपेटी, शुभ आहार और मस्त सदाबहार एवरग्रीन गानों के साथ जुड़ जाइए अभी से लेकर 2 बजे तक। फटाफट आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294, क्योंकि यहाँ पर दिल ने दिल को पुकारा और आपके मैसेजेस आ गए हैं अपनों के नाम।

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti.
2: खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत गाने तो बनते हैं भाई. थैंक यू सो मच. 12:18. वैसे आज किसी का बर्थडे है नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत ही स्पेशल एक्टर का भी बर्थडे है, द लेट मनोज कुमार साहब. जी हाँ, मनोज कुमार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, जिनको हम भारत कुमार से जानते थे. वो तो नहीं रहे, लेकिन हाँ आज उनका जन्मदिन है. थोड़ी बहुत बातें उनके बारे में कहेंगे, उनके करियर, उनके जीवन के बारे में. अभी के लिए मौसम प्यार का है, सो आप इसको एन्जॉय कीजिएगा. And 5499-1294 पर आकाश एंड मनसुख फैमिली फ्रॉम बॉबूसा देने के लिए थैंक यू. मिलान से हैं, इटली से मिस्टर राजन देवी, कहते हैं बुझावन परिवार के नाम. ओसो गुजार टू रमेश एंड देविका एंड ऑफ कोर्स नंदू परिवार के लिए. सो 5499-1294 पर आपके मैसेजेस अपनों के नाम.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: इस वक्त पोएटो कानोनी में काम कर रही है अनुषा, उनके सभी फ्रेंड्स सबको बों को आज अंजलि जी, आप ओत्रियोले से आपने गाने की फरमाइश की है तो बस सुनते रहे आपकी फरमाइश थोड़ी देर में। अभी के लिए कुमार सानू एंड सपना मुखर्जी की आवाजों में बैक टू द 90s, ये है ललगार फिल्म से लिया गया।

0: रेट्रो रिदम।
1: आपको पता भी नहीं चलेगा प्यार कब हो गया, लेकिन हाँ अगर सच्चे साथी से हो जाए तो बल्ले बल्ले। सो आपको कहा कि आज है 24th of July और बस आज सेलिब्रेट कर रहे हैं द बर्थडे ऑफ द ग्रेट मनोज कुमार साहब। 24th July 1937 को उनका जन्म हुआ था और 4th अप्रैल 2025 को वो चल बसे थे। ग्रेट एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट, एडिटर और हिंदी सिनेमा के एक ग्रेटेस्ट और मोस्ट अकम्प्लिश्ड एक्टर्स में से रहे हैं। और जो पैट्रियोटिज्म यानी कि जो हम देशभक्ति की बात कहते हैं ना, ऐसी मूवीज उन्होंने बनाई 4 decades से ज़्यादा। ही हैज़ वर्क इन 55 फिल्मों से ज़्यादा उन्होंने काम किया एंड ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री, दादा साहेब फाल्के और कई नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स से सम्मानित किए गए। और जब उनकी मूवीज़ की बात करते हैं तो उनका डेब्यू हुआ

था यानी कि 1957 में फिर फैशन के साथ फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसी ऐसी मूवीज में काम किए और खुद बनाई जैसे कि शादी फूलों का सेज और गृहस्थी वो कौन थी कैसे भूल सकते हैं साथ में शहीद फिल्म में उन्होंने भगत सिंह का रोल निभाया था और हिमालय की गोद में दो बदन फिल्मों की लिस्ट तो इतनी लंबी है उपकार या फिर हरियाली और रास्ता वैसे गाने तो बहुत सारे हैं अगर चलाना शुरू कर दे हाय हाय तो आंसू निकल आते हैं आँखों से तो बस उनको आज हम याद कर रहे हैं क्योंकि कलाकार हम हमेशा कहते हैं एक बात कलाकार भले ही मर जाए लेकिन उनकी कला कभी मरती नहीं है हमेशा जीवित रहती है तो चलिए इस गीत के जरिए हम उनको याद करते हैं

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: मैं सरा जमदेवी फ्रॉम मिलान, आपने इस गीत की फरमाइश की थी सुहिया यू सात समुंदर पार, बस दिल तो इधर ही है, अपने देश में है, अपनों के साथ।

0: सफर में हम भी बहते चले जाते हैं, कहीं बस से, कहीं गाड़ी से, कहीं नदिया से, कहीं सीसाइड से, बस व्हाटएवर यू माइट बी। काफी लोग अभी छुट्टियां पर है, हमारे बच्चे लोग तो शायद अपने बच्चों के साथ बीचेस पर होंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। 5499-1294 पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: One of the most romantic songs रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में ये है, चलिए बन के साथ ही प्यार की राहों में। चलिए हमारे हम सफ़र आप ही बने हुए हैं, स्वीट हार्ट फिल्म से लिया गया। फूफा भीम, ये गाना आपके नाम, चचा मुकेश और सब परिवार के लिए।

0: अगर वाकई में आपको अच्छा लग रहा है तो चलिए हमारे हम सफर बनते चलिए 2 बजे तक ऑन 5499-1294
1: रेट्रो रिदम।
0: चलिए बात हो रही है बात द ग्रेट मनोज कुमार साहब। जी हाँ, वे सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं थे बल्कि एक, जैसे कि हमने कहा, सफल राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। उन्होंने हमेशा ऐसी फिल्में बनाई जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती थी बल्कि समाज को एक, कहते ना, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव संदेश भी देती थी। उनकी फिल्मों में पारिवारिक मूल्य, संस्कार, मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र प्रेम, भक्ति प्रेम, देशभक्ति प्रेम की खूबसूरत झलक देखने को मिलती थी। उनकी अभिनय शैली बहुत ही अलग थी और उनकी फिल्में देखकर, शोर हो, रोटी कपड़ा मकान हो या फिर कोई और आप फिल्म देख लें, गहरी आंखों की भावनाएं, धीमी लेकिन प्रभावशाली जो डायलॉग डिलीवरी हुआ करती थी और चेहरे पर हाथ रखकर उनका सिग्नेचर जो मौक था, चेहरे पर हाथ रखकर सोचने का उनका अंदाज, उनकी पहचान बन गई। उनके किरदार हमेशा सच्चाई, त्याग और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक रहे। तो चलिए, देशभक्ति की बात हो चली है, इस गीत को सुनकर आई एम श्योर जितने भी हमारे भारतीय दोस्त हैं, भाई बहन हैं, वो तो भावुक होंगे ही, लेकिन इसमें कुछ है महेंद्र कपूर की आवाज में जो सबको, अपने आप को खींच लेते हैं।
2: जब

12:56 हो रही है। वीना कैसी है आप? आई डियर फ्रेंड वीना संभु पूरे परिवार के नाम एंड मधुमती फिल्म का ये गाना आपके लिए एंड यही गाना हमें दी जाएगा 1 बजे की संक्षिप्त समाचारों की ओर।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
3: Ek baja hai. देश विदेश की खबरें आपसे आशीता नमस्कार आपको
4: नमस्कार नीतू शाश्वताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है मॉरिशस में ग्रैंड थॉर्नटन ने अपने कारोबारी विस्तार

0: आर के तहत नई पहचान और विस्तृत सेवाओं की घोषणा की है। इस संबंध में गुरुवार 23 जुलाई को पोर्टली स्थित लुला बोदोने होटल में आयोजित कार्यक्रम में समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी की नई रणनीति की जानकारी दी। पिछले 16 वर्षों से मॉरिशस में कार्यरत जीपीओ लिमिटेड अब ग्रांट थॉर्नटन मॉरिशस लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। कंपनी के अनुसार ये बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं बल्कि इसके साथ सेवाओं के दायरे का भी विस्तार किया गया है। अब कंपनी 4 प्रमुख क्षेत्रों ऑडिट परामर्श यानी कंसल्टिंग टैक्सेशन और आउटसोर्सिंग सेवाओं में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी का उद्देश्य मॉरिशस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना है। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT मंत्री दीपक बालगोबीन आज सुबह लगभग 10:30 बजे पोर्ट लुइस के लाइन बाराक्स पहुंचे। उनके साथ वकील रवि रिगादू और सुदेश कालीचरण भी मौजूद थे। दीपक बालगोबीन से CCID कथित टेलीफोन जासूसी मामले में पूछताछ कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले की जांच के सिलसिले में इससे पहले CCID की काउंटर टेररिज्म यूनिट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लीलराम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे निगरानी उपकरण के एक्सेस कोड उपलब्ध कराने से इनकार किया जिसका इस्तेमाल कथित रूप से टेलीफोन वार्तालापों को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। इन रिकॉर्डिंग्स को मुस्ताश लिंक्स के नाम से सार्वजनिक किया गया था। स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित ओवीयू हाइड्रो अरीना में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ खेलों का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह का प्रमुख आकर्षण विभिन्न देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों की रंगारंग मार्च पोस्ट रही। 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इन खेलों में इस बार 74 देश और क्षेत्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 3,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिनमें मॉरिशस के करीब 40 खिलाड़ी भी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस के अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कैफे पेनिनसुला को पूरी तरह खाली कराने के आदेश दिए हैं। इसके बाद सैकड़ों लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र को इसीलिए खाली कराया गया है क्योंकि जिरोदे क्षेत्र में कई दिनों से भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को सोमस क्षेत्र में शुरू हुई इस आग ने रात भर विकराल रूप बनाए रखा और अब तक लगभग 8,700 हेक्टेयर यानी करीब 21,500 एकड़ क्षेत्र इसके चपेट में आ चुका है। उधर स्पेन सरकार ने राजधानी मैड्रिड के निकट कई इलाकों में बेकाबू होती जंगल की आग को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में रात भर के दौरान किसी नई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। हालांकि मंगलवार को बोदो हवाई अड्डे के निकट आग बुझाने के अभियान के दौरान 2 दमकल कर्मी की मौत हो गई थी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। लामारी ओकुले में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री धनराज बुलक जिन्हें दान के नाम से लोग ज्यादा जानती थी और जो पहले MBC के पूर्व अधिकारी थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी नीता बुलक के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स के शमशान होम में ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। एवेन्यू दे पेरुश मोसलमा माए बोवालो में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्राकेन देवी जिन्हें पहलाद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे सुनील देवी के घर बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग के शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Testing 1-2. Yeah.
3: कभी सोचा है
2: NBC Radio के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा

0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज

0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: Retro Rhythm
3: RM2 Radio Musti.

0: पक्का वादा रहा। बोला ना आपसे जुदा तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बस साथ निभाते चलिएगा। और 5549912094 1:01, वेलकम बैक।
1: RM2 रेडियो मस्ती। Join the RM2 team this Saturday, 25th of July, for a blood donation event at SBM FLAC, organized by SBM. RM2 will be live as from 10 a.m. to noon. Join us for a good cause.
2: RM2
1: Radio Musti.
0: चलिए जी, गानों का सिलसिला, यादों का सिलसिला जारी रखते हैं till 2 p.m. और दिल देख देखे देख लिया, बड़ा अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच अंजलि, पूरे परिवार त्रियोली से। लेट मी विश हैप्पी वेडिंग टू यू प्रतीक्षा बंधु ऑफ लालमाची एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम चाचा मुकेश, चाची साधना, सब परिवार लालमाची से। साथ ही साथ पापा सुबिराज मांगा आज अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पत्नी जमुना, बेटी पूजा, बेटा योगेश, दामाद विकेश, ग्रैंडसन्स वायु विहान, साथ में वियाना, ऑल मांगा एंड लक्ष्मण परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बाबू से धनेश्वर जी, पत्नी सुनीता, माला निशा रानी, दाबेदोस परिवार, साथ में सुखराम कालीसो परिवार, नमस्ते जी।
3: दिल देख

0: रेट्रो रिदम।
1: हम क्या हम कोई में से कोई नहीं भूल सकता है ऐसी मूवीज, ऐसे गाने, और स्पेशली मनोज कुमार पर पिक्चराइज्ड उनके डायलॉग्स, उनके एक्शन सब एकदम अलग। 1:27, थैंक यू सो मच। वैसे अभी आप सुन रहे थे रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से लिया गया रोमांटिक सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग इसी को कहते हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस। और जब उनकी बात हो रही है तो हमने कहा उनके जो योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया, और पद्मश्री हो, दादा साहेब फाल्के हो, और ये सब जो सम्मान है उनके दशकों तक के अनमोल योगदान और भारतीय सिनेमा को दी गई उनकी जो अनुपम सेवा का प्रमाण है। वैसे मनोज कुमार की फिल्में आज भी हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य, ईमानदारी या फिर समाज के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभाने में होती है। और उन्होंने सिनेमा को एक ऐसे माध्यम बनाया जिसे लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम और मानवता की ज्योति जागी, और उनकी फिल्मों में ये सब झलकती हैं। बीट शोर, रोटी कपड़ा मकान, और पहले जो भी गाने हमने आपको सुनाए, और जो भी उनकी मूवीज रही हैं जो आप बहुत ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर। रेखा बेटा आंच के नाम फ्रॉम बोमोज, खास दोस्तों के लिए जो इस वक्त काम पर है, सुबह को हाश टू यू नौशीन, शालिनी, कल्याणी, इंदिरा इंदिरानी अगर हो तो उसका नाम भी जोड़ दो, और इंदिरा के लिए साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। आपको भी मिस्टर देव, और आप पेरिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी प्यारी पत्नी के नाम एंड पूरे परिवार के लिए।
2: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

थी 1967 की मूवी छोटी सी मुलाकात लेकिन खूबसूरत मुलाकात जिसमें उत्तम कुमार और विजयंतीमाला नजर आए थे एंड ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन का जबरदस्त संगीत। ये मूवी रिलीज हुई थी बाय द वे 1st of January 1967 और आगे की जो मूवीज रिलीज हो रही थी आप लोग देखने जा रहे थे, क्या हसीन समा था उस वक्त, इतना मजा आ रहा था। आजकल तो ऐसा है नहीं, आजकल तो सब कुछ इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया के जरिए देखी जा सकती है मूवीज, पर एवरग्रीन सॉन्ग्स तो एवरग्रीन है ही और ये मूवीज कभी पुरानी होंगी नहीं। तो बस 5499-1294 पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच। 1:34 हुए हैं, किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी गोलमाल।

0: रेट्रो रिदम।
1: मोहब्बत तो हो ही जाती है भाई, गाने ऐसे मस्त हो, ऐसे रोमांटिक हो तो मोहब्बत हो ही जाती है, पर वक्त का इशारा है 1:43। थैंक यू सो मच। वैसे हम और भी बातें कर रहे हैं अबाउट यू, अबाउट दी सॉन्ग्स एंड ऑफ कोर्स अबाउट मनोज कुमार द ग्रेट एक्टर। आज जब हम बात करें उनके बारे में तो देशभक्ति की बात होती है, जब भारत माँ के गौरव के गीतों और फिल्मों के जरिए महसूस करना हो तब मनोज कुमार का नाम सबसे बड़े सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। वैसे उनके योगदान हिंदी सिनेमा के इतिहास में सदैव स्वर्ण, कहते हैं ना, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वे केवल एक महान अभिनेता एक्टर ही नहीं थे बल्कि भारतीय सिनेमा राष्ट्रप्रेम और आदर्शों के अमर प्रतीक है। तो चलिए ऐसे कलाकार को शत शत नमन कहते हैं और उनके गाने, उनकी फिल्मों को हमेशा देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और अपनाते रहेंगे, और देशभक्ति की जो लहर है वो हमेशा ऊंचा अपने जो चौरंगे, वहाँ पर तो इंडिया है, यहाँ पर तो हमारा मॉरिशस है, तो अपने चौरंगे झंडे को हमेशा ऊँचा लहराते रहे और दिल में बस ऐसे ही प्यार, प्रेम, अमर और भाईचारे की लहर हमेशा लहराते रहे। चाची उषा अमोरी से आपके नाम पूरे परिवार के लिए, यह दो बदन फिल्म से लिया गया। भरे दुनिया में आखिर कोई आता है, चला जाता है और कोई रह भी जाता है हमेशा के लिए।

0: नेचुरल रिदम।
1: भाई कसम की कसम, इतनी कसम हमने खा ली है कि लेकिन क्या करें, कुछ गाने मिलते हैं कुछ गाने नहीं मिलते हैं। लाइक यहाँ पर बंटवारा फिल्म का गाना आपने मांगा था कविता जी नमस्कार मोचीदास से, लेकिन हमको नहीं मिला, लेकिन हम ढूंढ कर लाएंगे डेफिनेटली आपके लिए। आपके लिए भी बबीता जी फ्रॉम बोनाकय, साथ में है चांदिनी पुरुषोत्तम कहाँ से फ्रॉम ब्रितानिया, एंड ललिता एंड जीतन फैमिली को थैंक यू सो मच। मेथे निकित सिंह भोला जियाना रियाना सिटहल एंड बाहोश पॉपलू मुसिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू। हाय अनुष्का फ्रॉम गुडलैंड्स, गाना आप कहती है मेरी मामा सुदेवी के नाम फ्रॉम कॉगर्ब, आपके तीन बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियां, तो बस ऐसे ही एंजॉय करते रहे। एंड इट्स टाइम फॉर नीटू टू से बाय बाय, बस मुलाकात होती है अब मंडे मॉर्निंग को सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इन राइज एंड शाइन। हैव ए नाइस डे अहेड, हैव ए नाइस वीकेंड अहेड, और हमारे बात परी के साथ ऑफकोर्स इट्स गोना बी बॉम्बे टॉकीज़। टेक केयर।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार परेश, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। दो वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्ट लुइस के जीतू अस्पताल का शव गृह दोबारा संचालित होने लगा है। इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शव गृहों की कार्य प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है। इन शव गृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रखरखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली आम लोगों की नज़रों से प्रायः दूर रहती है। मॉरिशस में ग्रैंड थॉर्नटन ने अपने कारोबारी विस्तार के तहत नई पहचान और विस्तृत सेवाओं की घोषणा की है। इस संबंध में गुरुवार 23 जुलाई को पोर्ट लुइस के लाबुदने होटल में आयोजित कार्यक्रम में समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी की नई रणनीति की जानकारी दी। पिछले 16 वर्षों से मॉरिशस में कार्यरत जीपीओ लिमिटेड अब ग्रैंड थॉर्नटन

0: मॉरिशस लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। कंपनी के अनुसार ये बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि इसके साथ सेवाओं के दायरे का भी विस्तार किया गया है। अब कंपनी चार प्रमुख क्षेत्रों ऑडिट परामर्श यानी कंसल्टिंग टैक्सेशन और आउटसोर्सिंग सेवाओं में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी का उद्देश्य मॉरिशस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना है। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री यानी आईसीटी मंत्री दीपक पाल गुबीन आज सुबह लगभग 10:30 पोर्ट लुइस के लाइन बैरक्स पहुंचे। उनके साथ वकील रवि रिगादू और सुदेश कालीचरण भी मौजूद थे। दीपक बालगोबीन से सीसीआईडी कथित टेलीफोन जासूसी मामले में पूछताछ कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले की जांच के सिलसिले में इससे पहले सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लीला मदियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे निगरानी उपकरण के एक्सेस कोड उपलब्ध कराने से इनकार किया जिसका इस्तेमाल कथित रूप से टेलीफोन वार्तालापों को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। इन रिकॉर्डिंग्स को मुस्ताश लीक्स के नाम से सार्वजनिक किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के मैनचेस्टर में स्थापित नए नंबर 10 नोफ कार्यालय में आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। डाउनिंग स्ट्रीट की ये नई शाखा प्रधानमंत्री की उस पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य व्हाइट हॉल और वेस्टमिंस्टर से प्रशासनिक तथा नीतिगत अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर देश के विभिन्न क्षेत्रों को अधिक अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति देता है। मंत्री लूसी पावल और लुइस हेग भी नियमित रूप से इस नए कार्यालय से कार्य करेंगी। अगले वर्ष के अंत तक यहां लगभग 300 सिविल सेवकों की तैनाती किए जाने की योजना है। आज मैनचेस्टर में एंडी बर्नम राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मंत्रिमंडलीय समिति का गठन वर्ष 2008 में पूरे ब्रिटेन के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया था। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। सात्रे बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। मॉस्को रोड रोजबेल में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्मावती भरत पैदाश नाम रामजावन और जिन्हें इंद्रावती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे ससिराज भरत के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमरो एट 11 AM। लामारे उकुले में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्रीधनराज बुलक जिन्हें दान के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो MBC के पूर्व अधिकारी थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती नीता बुलक के घर उकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Join the RM2 team this Saturday, 25th of July, for a blood donation event at SBM FLAC, organized by SBM. RM2 will be live as from 10 a.m. to noon. Join us for a good cause.
3: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: मस्ती।
1: And well, friends, with this track, हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. That's Gafoor for you. चलिए, everyone who's connected हमारे साथ, ये गाना आप सभी के नाम और Bads of Bollywood, ये सीरीज का ये गाना हमारे सभी listeners के लिए. Have a wonderful time.

0: The time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
0: North, South,
1: 103.5.
0: East, West,
1: 96.4.
0: Center,
1: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार, प्रिय श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दो वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्ट लुइस के जीतू अस्पताल का शवगृह दोबारा संचालित होने लगा है। इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शवगृहों की कार्य प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है। इन शवगृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रखरखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली आम लोगों की नज़रों से प्रायः दूर रहती है। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री आईसीटी मंत्री दीपक बालगुबिन आज सुबह लगभग 10:30 बजे पोर्ट लुइस लाइन बैराक्स पहुंचे। उनके साथ वकील गवी रिगादू और सुदेश कालीचंद भी मौजूद थे। दीपक बालगुबिन ने सीसीआईडी कथित टेलीफोन जासूसी मामले में पूछताछ कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले की जाँच के सिलसिले में इससे पहले सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लीला हमदियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे निगरानी उपकरण के एक्सेस कोड उपलब्ध कराने से इनकार किया जिसका इस्तेमाल कथित रूप से टेलीफोन वार्तालापों को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। इन रिकॉर्डिंग्स को मुस्ताश लिंक्स के नाम से सार्वजनिक

0: किया गया था। स्कॉटलैंड की ग्लासगो स्थित ओवियू हाइड्रो अरीना में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों की रंगारंग मार्च पास्ट रही। चार वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इन खेलों में इस बार 74 देश और इलाके भाग ले रही है। प्रतियोगिता में लगभग 3000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मॉरिशस के करीब 40 खिलाड़ी भी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिलिया भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका ने अपने 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर नए शुल्क लागू कर दिए हैं। ये कदम अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद फिर से शुरू हुए व्यापारिक विवाद को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। नए शुल्कों के दायरे में ब्रिटेन, चीन और यूरोपीय संघ समेत कई देश शामिल हैं। इन देशों से आने वाले लगभग सभी सामानों पर 10 से 12% यानी 10 से 12.5% तक आयात शुल्क लगाया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि ये शुल्क इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार जबरन मजदूरी की समस्या से निपटने में पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई है। हालांकि अमेरिकी व्यापार विशेषज्ञ ने कहा है कि ये कदम जबरन मजदूरी से संबंधित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप शुल्क लगाने के लिए एक कानूनी आधार तलाश रही है। इस साल की शुरुआत में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपातकालीन शक्तियों के तहत वैश्विक स्तर पर लगाए गए कई शुल्क कानूनी रूप से लागू नहीं किए गए थे। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Masti.
4: Radio.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti. Bombay Talkies, Radio Masti.
1: Radio Masti.
2: तो वेल फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और जैसे हम कहते हैं कि फ्राइडे बॉलीवुड के लिए काफी स्पेशल होता है क्योंकि बहुत सी फिल्में रिलीज होती है और जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते कुछ नया या तो सीरीज या तो मूवीज हमें देखने को मिल रही है। और अब तो हम कह सकते हैं कि जो दर्शक है उनके पास अब ज्यादा ऑप्शन हो गए हैं, यानी कि अगर सिनेमा में जाकर आपको कोई मूवी नहीं देखनी है तो आप घर पर ओटीटी पर परिवार के पूरे परिवार के साथ बैठ कर आप पॉपकॉर्न एंजॉय करते हुए कोई अच्छी सीरीज या फिर कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो जैसे हमने कहा कि एवरी फ्राइडे स्पेशल और हमारे लिए तो हर दिन खास है जो हम आपके लिए खास बनाते हैं विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अभी के लिए बी राउंड की अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स, तो साथ देने के लिए शुक्रिया। दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ धुरंधर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा स्टार क्रिकेट को काफी पसंद करता है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन से लेकर सलमान खान, वरुण धवन तक कई सेलेब्स क्रिकेट के दीवाने हैं। वहीं बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी भी क्रिकेट का जबरा फैन है, और जब उन्होंने आईपीएल को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया तो उनके फैंस भी चौंक गए। और सुनील शेट्टी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, इस दौरान उन्होंने क्रिकेट को लेकर खुलकर बात की और उन्होंने आईपीएल के पहले सीजन यानी कि साल 2008 में आईपीएल की जब शुरुआत

हुई थी तब उस टाइम को याद किया और बताया कि कैसे उनका आईपीएल टीम के मालिक बनने का सपना जो है वो अधूरा रह गया। सुनील शेट्टी ने बताया कि अगर किसी ने मेरा साथ दिया होता तो मैं आईपीएल टीम खरीद सकता था। आज काफी फंडर्स और इन्वेस्टर्स आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था और हम इतने पैसे खर्च करने के लिए सोच भी नहीं सकते थे, बिकॉज उस टाइम पर टीम खरीदना बहुत ज़्यादा सुपर एक्सपेंसिव हुआ करता था। और जैसे उन्होंने कहा कि उस टाइम पर ना कोई फंडर्स ना कोई इन्वेस्टर्स होते थे, तो एक इंसान के लिए एक पूरी टीम खरीदना काफ़ी मुश्किल बात हुआ करती थी। यानी कि सुनील शेट्टी को किसी और से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता तो वो आईपीएल टीम पर पैसा लगा सकते थे। और ये तो हम जानते हैं कि केएल राहुल, यस, इंडियन क्रिकेट टीम के जाने माने क्रिकेटर, ये उनके दामाद है। तो चलिए, टीम खरीदने का सपना भले ही उनका पूरा ना हुआ हो, लेकिन एक इंडियन क्रिकेटर उनका दामाद बन गया है। एंड जैसे वो बताते हैं कि कितना अच्छा बॉन्ड है उनका और केएल राहुल का। सो वेल, अभी के लिए तो यहाँ पर सुनील शेट्टी का जो सपना था ये अधूरा रह गया, लेकिन क्या पता फ्यूचर में शायद वो किसी टीम के मालिक बन जाए। लेकिन दोस्तों, अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं तो इट्स 3:44 और आप जानते हैं योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस होते हैं खास एंड स्पेशल। इन्हें लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में ऑन 5499-1294। परी का साथ है ऑन RM2 रेडियो मस्ती। यू आर लिसनिंग टू योर बॉम्बे टॉकीज़।

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो वेल फ्रेंड्स, दो से लेकर चार

0: And well, friends, with next track, it's time for Pari to say goodbye. मेरे बाद आ रही है गिनिशा लेकर your Friday mashup. उनका साथ दीजिए. Have a wonderful Friday. Have a wonderful weekend. मुलाकात होगी आपसे कल morning 8 से लेकर 11 बजे तक और लेकर आएंगे आपके लिए timeless तड़का. So कहीं मत जाइए. Stay connected. RM2 Radio मस्ती के साथ.
1: Don't worry. Take the tension. Feel the pressure. Be happy. Don't worry. Take the tension. Feel the pressure. Be happy.
2: RM2 Radio Masti.

0: Such a beautiful and lovely song, specially for you, my dear and lovely people out there, जो साथ दे रहे हैं on RM2 Radio मस्ती चकदे फते फिलहाल के लिए. Just check your time, it's already 4 PM.
1: RM2 Radio मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: आइए सुनते समाचार राशिता के साथ. नमस्कार.
5: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. मॉरिशस में जल आपूर्ति की स्थिति पर अब भी दबाव बना हुआ है. बारिश की कमी के कारण देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य औसत से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है. फिलहाल पानी की कटौती मुख्य रूप से केंद्रीय पठारी क्षेत्रों तक सीमित है, यानी कि सेंट्रल इलाकों में. हालांकि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो जल संरक्षण के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं प्रतिबाधक उपाय भी लागू किए जा सकती हैं. मॉरिशस की पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री दीपक बाल गोबिंद से आज CCID ने गवाह के रूप में पूछताछ की. जांच के दौरान उनसे उनके मंत्री कार्यकाल में संसद से पारित एक कानून के संबंध में जानकारी मांगी गई. ये पूछताछ कथित टेलीफोन निगरानी उपकरणों की खरीद से जुड़े मामले में चल रही पुलिस जांच के तहत की गई है. 2 वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्टलिस के जीतू अस्पताल का शवगृह दोबारा संचालित होने लगा है. इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शवगृहों की कार्य प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है. इन शवगृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रखरखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं. हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली आम लोगों की नजरों से प्रायः दूर रहती है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य पूर्व का संकट अब एक नए चरण में पहुंच गया है. ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों के लगातार 13वें दिन यमन के हुती विद्रोहियों ने दबाव किया है कि उन्होंने लाल सागर में, यानी कि रेड सी में, सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है. ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के इस दावे के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है. इस बढ़ते संकट का असर पहले ही वैश्विक बाजारों पर दिखाई देने लगा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और तेल का एक बैरल अब 100 अमरीकी डॉलर से अधिक पर पहुंच गया है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: It's not just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup.
6: Friday Mashup. RM2 Radio Musti in the mix.

0: Friday Mashup.
1: 4 to 6 on Radio Musti.
2: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
3: वेलकम टू क्यूथम स्टूडियो की घड़ी में 4:07 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. हे हैप्पी फ्राइडे माय ब्यूटीफुल पीपल. कैसे हैं सभी लोग? नमस्कार जी और गणिशा का प्रणाम. आप सभी लोगों का स्वागत है दिस ब्यूटीफुल शो जहां पे हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यो फ्राइडे मैशअप. तड़का मार के सुनाएंगे आज कुछ ऐसे गाने तराने जिस तक एक साथ दिस ब्यूटीफुल वीकेंड. सो आई रियली होप यू गाइस हैड अ ग्रेट वीक एंड यस अ गुड वीकेंड इज वेटिंग फॉर यू अहेड एंड द गुड वाइब्स हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. और हम रहेंगे आपका साथ देने के लिए रात के

शायद बहुत सारे लोग तैयारी में हैं टू लीव द ऑफिस, काम की जगह से निकल के जाना है कहीं पर, ऐसे आम यात्रा कंपनी यू बैक होम, घर पे जाना है, कॉफी पीने जाना है, अपनों से मिलने जाना है, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। ऑन 5499124 पर कोई लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, सो व्हाई नॉट, यू कैन डू इट राइट नाउ राइट अवे। फॉर दोस हु आर ट्यून टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, हियर वी गो, लेट्स एंजॉय दिस। Get ready to groove with me on RM2 Radio Mastic.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

जितने भी हमारे रेडियो मस्ती लवर्स हमारा साथ दे रहे हैं, वैसे देखा जाए तो वीकेंड का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और फ्राइडे आफ्टरनून हो गया है। जी हाँ, फुल ऑन पार्टी मोड शुरू हो चुकी है आपके और हमारे बीच में। सो ऑफिस हो, ड्राइव हो या घर पे चिल का सीन चल रहा है, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि रेडियो मस्ती का जो फ्राइडे मैशअप शो है ना, लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ नॉन स्टॉप ब्लॉकबस्टर सुपर हिट्स, क्रेजी मैशअप्स और वीकेंड वाली फुल ऑन एनर्जी मेरी जान। तो स्ट्रेस को बोलो बाय बाय और वीकेंड को बोलो हाय हाय। So stay tuned and stay connected and keep on smiling, my dear. और म्यूजिक के साथ स्टार्ट करो अपना खूबसूरत सा वीकेंड, किक स्टार्टेड विद मी किनिशा ऑन आवर टू रेडियो मस्ती, सिर्फ रेडियो मस्ती पर। फ्राइडे मैशअप शो पे एक्चुअली ये बीट पे बीट मस्ती नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा रात के 7 o'clock तक। और फिलहाल के लिए चलिए जी, आई हैव गॉट यू द नेक्स्ट वन, जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं। एंड स्पेशली आई डू हैव हमारे जितने भी MBC फैमिली है हमें सुन रहे हैं, एंड नील वो बोलते हैं जितने भी हमारे कलीग्स लोग हैं, सभी लोग जो साथ दे रहे हैं ये गाना उनके नाम।

0: just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: चलिए जी चेक किया 28 मिनट्स हो चुके हैं. फ्राइडे है आज 24 जुलाई 2024. दोस्तों सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज. हेलो जी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और वैसे ही आज से वीकेंड शुरू हो जाते हैं. सो फ्राइडे आफ्टरनून है, मतलब वीकेंड सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर है और टाइम आ गया है कि मूड को अपग्रेड करने का. और ये आप हम पे छोड़ दीजिए क्योंकि हम यहाँ पे आ गए हैं ना विद सच ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन. वेलकम द फ्राइडे मैशअप शो. जी हाँ दोस्तों, रेडियो मस्ती है जहाँ बजेंगे बैक टू बैक धमाके दार मैशअप्स फॉर यू. चार बस्तीस गाने भी और ऐसे के बीच जो आपको सीट से उतने पर हम मजबूर कर देंगे. बिल्कुल ऑफिस ब्लूज को करो म्यूट और फिलहाल के लिए म्यूजिक को करो फुल ऑन वॉल्यूम क्योंकि फ्राइडे का असली सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है आपके और हमारे बीच में. एंड चलिए जी 5491294 पर आप हमें भेज सकते हैं अपने प्यारे प्यारे डेडिकेशन. जस्ट टू लेट मी नो कि आप लोग कहाँ से हमारा साथ दे रहे हो.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
0: Sports News.
1: Radio Musti in the mix.
3: तो चलिए जी, टाबा करते करते हम भी तो पहुंच गए हैं स्पोर्ट्स की गलियों में हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ। गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद जी।
4: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून लिसनर्स। सो इट्स गुड न्यूज क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में शुरू हुए, आज से हमारे एथलीट लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टू स्टार्ट विद बॉक्सिंग में जिगी आगत जो क्वालिफाई हुआ है -65 किलोग्राम वाली कैटेगरी में, वो अपना मैच साउथ अफ्रीका के डामिजी के खिलाफ था और फर्स्ट राउंड में रेफरी ने मैच रोका, ऐसे में वो क्वालिफाई हो गया फॉर द नेक्स्ट राउंड। स्विमिंग में 100 मीटर्स स्ट्रोक में, बैक स्ट्रोक में हंस लीगिंग पिंग दूसरे स्थान पे आया, मोस्ट प्रोबेबली वो क्वालिफाई हो जाएगा हंस लीगिंग पिंग समेत में। और बाकी जो रिजल्ट रहे इनमें विल नोट अनिष्टा तिलक जो 200 मीटर बैक स्ट्रोक में वो चौथा स्थान ले पाई, सो अनिष्टा तिलक फोर्थ प्लेस इन दी 200 मीटर्स। अभी आगे और जो हमारे बॉक्सर हैं आएंगे उन पर आपको जानकारियां देंगे। तो आज आगत तो आ गया, वालेरी ये सब आज आएंगे, फिर स्विमिंग में भी और एक दो रेसेस हैं, ये सब

0: स्ट्रोक स्पोर्ट्स 11 पर फॉलो कर सकते हैं और खासतौर पर मॉरिशस के जो एथलीट हैं उन पर समय समय पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एमबीसी 11. लेट्स जंप टू फुटबॉल जहां पर एन्जो मारिस्का ने मैनचेस्टर सिटी के साथ पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया. पेप गॉर्जोला इटली के मैनेजर का पोस्ट नहीं देगा. ही टर्न्स डाउन इटली मैनेजर जॉब. जबकि यर्गन क्लॉप अपना जर्मनी का रेन शुरू करता है बाय थ्रेटनिंग टू क्विट. उस मैनेजर बन गया लेकिन उसने बताया कि अगर मीडिया वाले उनके फैमिली के प्राइवेसी को इन्वेड करेंगे तो वो जर्मनी का पद छोड़ सकता है. सो इसीलिए सुनसान चुपचाप अपना काम वो करना चाहते हैं. वी नो इंटरफेरेंस इधर या उधर. कुछ ट्रांसफर न्यूज भी. न्यूकासल यूनाइटेड मोनाको से 34 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर बाम्बा को उसने साइन किया. और हैरी केन बायर्न म्यूनिख से बात कर रहा है फॉर ए न्यू डील. खबर पक्की है लेकिन रहेगा या नहीं दिस इज अनदर वन. चेल्सी डिसाइड हो गया है कि एक डिफेंडर को साइन करेगा और वो क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर लाक्वा से बात कर रहा है. प्लेंटी ऑफ ट्रांसफर हियर एंड देयर कमिंग अप. देखेंगे किसको कहां पर कौन खरीदेगा. अभी तक तो कोई मेडल नहीं आया है. जैसे ही पहला मेडल आएगा आपको बताएंगे फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स. फिर क्रिकेट में आज वी सेड यस्टरडे इंडिया की टीम जीत गई काफी दिनों बाद. उसकी जीत हुई अगेंस्ट जिम्बाब्वे. तो अब दे हैव फाउंड देयर विनिंग वेज. लेकिन आगे चलकर जिम्बाब्वे की टीम डेंजर साबित हो सकती है. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. और टूर दे फ्रांस भी जारी है. विल बी गिविंग यू ऑल द अपडेट्स. डोंट फॉरगेट हमारे एथलीट रिंग पे उतरेंगे और स्विमिंग पूल पे भी होंगे. लेट्स से एले मोरिस स्पोर्ट्स 11 पर आप लोग देख सकते हैं ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग आवर लोकल एथलीट्स.
1: विशिंग यू अ लवली वीकेंड अहेड अरविंद जी.
0: थैंक यू. और वीकेंड में बहुत कुछ होगा. बहुत से एक्टिविटीज विल बी फॉलोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स ऑल दीज. इस सप्ताह अगले सप्ताह भी सो मेनी एक्टिविटीज गोइंग ऑन. कीप ऑन लिसनिंग. देंगे आपको ज्यादा खबरें.
1: ओनली ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Mega promo code Quality Deco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Oui, cassez-le la voix. La lumière moderne, prix choc. L'ordoise, à ban prix qui pour faire ou même gagne pas quoi. Décoration pour la case, en dents, en déo. Sanitaire, levier, gazon artificiel. Enfin, c'est tout. Pour plus renseignements, check page Facebook Quality Deco.
2: RM2
4: Radio Musty
5: Hits Music Only.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
3: Friday Mashup. Get down. Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.
3: RM2.
4: Traffic Update.
5: You're listening to your number one radio station, of course. That's RM2 Radio Messi और मैं हूँ गिनिशा जो साथ दे रही हूँ। और फिलहाल के लिए ये फ्राइडे पीक आवर शुरू हो चुके हैं, सो ट्रैफिक का अपडेट हम लेकर आए हैं फ्राइडे इवनिंग पीक आवर। एंड रोड पर ट्रैफिक काफ़ी हैवी होने वाली है, जस्ट लाइक यू नो हमेशा ऑफिस आवर्स के बाद ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले अभी आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम रेजवी से फिनिक्स की तरफ, देखते हैं व्हीकल्स जो हैं इस पर मूव पर कर रहे हैं बट दे आर मूविंग और कई जगह लॉन्ग क्यूज देखने को मिल रही है जहां पर राउंड अबाउट्स आते हैं एंड एवरीथिंग, सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी पेशेंट। और अगर हम देखें तो फिनिक्स से क्यूपिप और आगे साउथ की तरफ भी ट्रैफिक स्लो मूविंग पर है। और अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए, क्योंकि आपको तो पता है कि आने वाले वक्त में यानी कि कुछ 30-40 मिनट्स के बाद काफ़ी जाम हो सकते हैं। कैटोवन एंड रोजिल में हर फ्राइडे की तरह, एवरी आफ्टरनून की तरह ट्रैफिक बहुत स्लो है। मेन रोड्स पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है। सो फिलहाल के लिए चलिए लेट्स चेक इट आउट पोर्ट लुइस में क्या हाल है। पोर्ट लुइस में सिचुएशन थोड़ा बिजी है, नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शंस में ट्रैफिक बहुत स्लो है, इसलिए डिलेज एक्सपेक्ट कर लीजिए। और वेदर जो रोड यूजर्स हैं पर भी व्हीकल्स स्लो मूव कर रहे हैं, आपको बता दूं तो ड्राइव पेशेंटली और केयरफुली, क्योंकि ऑफिसेज अभी खत्म हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं दे आर हेडिंग बैक होम। ये था आपका लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट, हम फिर लौटेंगे रोड कंडीशन के नए अपडेट्स के साथ हमेशा ऑन RM2 रेडियो मस्ती। और वैसे बाकी जो हमारे लिसनर्स अगर सुन रहे हो आप, यू हैव सम लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स फॉर अस, सो नॉट टू फॉरगेट द नंबर, इट्स 5499-1294 पर 5499-1294। यू कैन सेंड अस द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।

स्टूडियो की घड़ी में 9:05 हो चुके हैं एंड यस इट्स मी निशांत माइक साथ देने के लिए इन योर फ्राइडे मैशअप. यस माय डियर लवली पीपल आउट देयर, इट्स ऑलरेडी फ्राइडे, सो वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो जहां पे हम बहुत ही धमाकेदार गाने आपको सुना रहे हैं जस्ट टू किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीकेंड, सेंड द गुड वाइब्स टू यू एंड मेक यू फील वेरी वेरी हैप्पी. ऑफकोर्स जी, क्योंकि जब आप लोग स्माइल करते तो काफी क्यूट दिखते हो, किसी ने बताया नहीं, चलिए जी कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, हम है ना बताने के लिए कि आप ऐसे ही स्माइल करते रहना. There is no tax on smiling, so just give me a beautiful smile and keep on enjoying these beautiful songs.

0: 92
1: Radio Musty.
2: Kamla, elle a senti bon que toi là. Qui? Tu bain de parfum? Tu l'auto aussi bain de parfum? Tu sale de bain si bain de parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandal à le kick? Pe toi l'im sandal 24-7 toi?
3: Celle là, tu peux en trouver ça. Fait que t'es beau que celle là.
2: Allo kick gel air freshener pocket sized? Astier, me comprends. Tu mets air freshener dans ton postement sportif.
3: Vrai même, t'es bien comique, toi. Hein? Allez, essaye tout. Allo kick, peine à ce deuxième sans bosser.
4: Allo kick, freshness anytime, anywhere.
5: तोहर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगी खराबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिया या sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आशर्त भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
6: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
7: Depuis premier jour, nous finissons toujours là. À zout l'écoute, à zout côté. À chaque moment important de zout la vie. Nous extra happy trouvons zout tous les jours connectés, grandis, épanouis. Et ensemble, nous pouvons continuer. Continuer causer, rier, partager, se dépiler, danser, amuser, rêver, vibrer. Zout.

I've got so many beautiful people out there just adding रहे हैं on Radio Mercy on this lovely here Friday afternoon. तो चलिए जी, let's check it out. Your dedications जो आपने बड़े प्यार से लिख के हमें भेजे हैं. We have Lalita Jitan. वो बोलते हैं सारे गाने rocking हैं कि नहीं. Thank you so much. And Shamdeep Bichon जी, ये अगला गाना especially आपके नाम. So we have हमारे प्यारे है जो Canada से सुन रही है हमारी ये है जो प्यारी सी है लवली राधा जी हैं. सो राधा जी, ये अगला गाना आपके लिए और आपके सारे लव वंस जो कनाडा में हैं, मॉरिशस में हैं, हमारे लिए, हमारे लिसनर्स के नाम. एंड विशिंग देम अ हैप्पी फ्राइडे, अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. थैंक यू सो मच. आशिनी फ्रॉम रिविया जू पर्स. मैक्स वन आपकी फैमिली यानी श्रेया, धीरज, आशना, अनुष्का, नानी, बिपन, जवाहिया फैमिली के लिए. Swinal, struck in traffic from Winners Flag to La Source Flag. Traffic is slow and sare ye jo gaane hain sare drivers ke naam. Bhai Shravan, Bhabi Kriti, Abhinav, Kian, and we do have Navya and Tilak Parivar ke naam. So I just have the next one especially for you, Mr. Ajay Kumar. Aur aaj Friday mashup hai to aise hi gaane aapko milenge sunne ke liye. Lalita Jitan, La Mancha se. Agla gana aapke liye Seaside pe ho, La Anse La Reaper. So wonderful song aapke pure parivar ke naam. Thank you so much. Jana Meri Jana, ye agla gana aapke naam. Thank you so much for choosing us as your radio partner.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना,

0: को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशियस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: बिल्कुल जी, इश्क का कलमा क्या, हम तो कहते हैं कि म्यूजिक का कलमा भी कर लेंगे आप लोगों के साथ ऑन आवर टू रेडियो मस्ती।
1: You're listening to RM2 or Radio Masti.
2: Fashion tips powered by Halkuri Fashion, house of ready-made garments.

0: तो लेके जाएंगे आपको फिलहाल के लिए फैशन की दुनिया में. सो अभी के लिए आई गॉट यू सम लेटेस्ट फैशन टिप्स. वीकेंड आ गया है और अगर आप बीच आउटिंग प्लान कर रहे हैं लेडीज, तो विंटर वेदर को ध्यान में रखते हुए स्टाइल भी जरूरी होता है ना. जी हाँ. सो लेडीज के लिए एक लाइट नीट टॉप या ओवरसाइज जो शर्ट है उसको जीन्स या लिनन पैंट्स के साथ आप पेयर कर सकते हैं. अगर हवा थोड़ी ठंडी हो तो एक लाइट डेनिम जैकेट या कार्डिगन परफेक्ट रहेगा. कंफर्टेबल स्नीकर्स या सैंडल्स और योर सनग्लासेस के साथ लुक एकदम कंप्लीट हो जाएगा. सो जस्ट ट्राई टू गेट योरसेल्फ ब्यूटीफुल लाइक दैट ऑन द बस. अच्छे से पिक्चर्स, अच्छे से सेल्फी जरूर क्लिक करके सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर सकते हैं.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
3: Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: पांच बज के 49 मिनट्स हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक जाम में टेंशन मत लीजिए, पेशेंस रखिए, हमेशा सीट बेल्ट हमेशा लगाइए, फोन यूज मत कीजिए वाइल ड्राइविंग, और सेफ डिस्टेंस जो है हमेशा मेंटेन कर ले वाइल ड्राइविंग, और रीच सेफली अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जहां पर आपको जाना है। वैसे किससे मिलने जा रहे हो, घर जा रहे हो या किसी अपने से? मिलने जाओगे ना, इट्स फ्राइडे, ऑफकोर्स ड्राइव सेफ एंड चलिए जी। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ये अगला गाना आपके नाम एंड साथ में आई हैव द नेक्स्ट वन for you, my dear Ajay Kumar, जो बोलते हैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, so thank you so much, and I really hope that you are well. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Choosing gana, I am listening with my family and cooking. That's Suya Bihari of Kangama. So courage to you, अगर आप किचन में हो अपने फैमिली को हमारा भी प्यार जरूर देना, and so nice कि सभी लोग मिलके किचन में खाना पका रहे हैं। Hey, nice program. Thank you so much. Yale Sham from Suriname, my sweet, sweet and प्यारा सा Yale Sham. So the next one goes out to you. और जितने भी बच्चे छुट्टियाँ पे हैं, घर पे हैं या कुछ भी कर रहे हो, हमारा साथ दे रहे हो, so the next song goes out to you. But still, I'm taking you back to memory. And that's a beautiful one, Disco 82. Kabhi suna aapne?
3: Close the door.

शुक्रवार 24 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में जल संकट की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बारिश की कमी के कारण जलाशयों का स्तर सामान्य औसत से काफी नीचे पहुंच गया है और आने वाले दिनों में और पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले मॉरिशस के उत्पादों पर अब कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले से मॉरिशस के निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है। मॉरिशस में कथित टेलीफोन निगरानी उपकरण खरीद मामले की जांच जारी है। पूर्व आईएसटी मंत्री दीपक बालगुबीन से आज सीसीआईडी ने गवाह के रूप में पूछताछ की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जेगो गौशिया एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। ईरान पर अमरीकी हमलों, हुती विद्रोहियों के दावों और ईरानी संसद की टिप्पणी ने क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक बाजारों और मॉरिशस पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात करें तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। पहले ही दिन मॉरिशस के मुक्केबाज जिगी अगाथ ने शानदार जीत दर्ज कर अपने अभियान की सफल शुरुआत की। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस में जल आपूर्ति की स्थिति पर अब भी दबाव बना हुआ है। मॉरिशस की कमी बारिश की कमी के कारण देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य औसत से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल पानी की कटौती मुख्य रूप से केंद्रीय पठारी क्षेत्रों यानी के सेंट्रल प्लेन विलियम्स तक सीमित है। हालांकि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो जल संरक्षण के लिए अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय भी लागू किए जा सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा आज जारी की गई नई शुल्क सूची के अनुसार अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले मॉरिशस के उत्पादों पर अब 0% आयात शुल्क लागू होगा। नई शुल्क व्यवस्था 60 देशों पर लागू की गई है जिनमें चीन, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और भारत शामिल हैं। हालांकि पहले 10% शुल्क के दायरे में रहा मॉरिशस अब इस सूची से बाहर कर दिया गया है। इस निर्णय को मॉरिशस के निर्यातकों और उद्योग जगत के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मॉरिशस के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में अमरीकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। इस पर हम हमारे अन्य बुलेटिनों के दौरान फिर से वापस आएंगे। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी मंत्री दीपक बालगुबीन से आज सीसीआईडी ने गवाह के रूप में पूछताछ की। जांच के दौरान उनसे उनके मंत्री कार्यकाल में संसद से पारित एक कानून के संबंध में जानकारी मांगी गई। ये पूछताछ कथित टेलीफोन निगरानी

0: उपकरणों की खरीद से जुड़े मामले में चल रही पुलिस जांच के तहत की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: दीपक बागोविन के साथ सेंट्रल सीआईडी में एक घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। उनके साथ उनके वकील रवि यगादू और सुदेश कालीचंद मौजूद थे। पूर्व आईसीटी मंत्री से वायर टेपिंग घोटाले के मामले में पूछताछ की जा रही है। उनके वकील के अनुसार दीपक बागोविन से 2021 में पारित किए गए एक कानून साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक्ट 2021 के बारे में जानकारियां मांगी गई। रवि यगादू कहते हैं एक जांच चल रही है जिस पर हम अभी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। अभी के लिए हम बस इतना कहेंगे जब दीपक बागोविन मंत्री थे तो उन्होंने सभी अन्य मंत्रियों की तरह संसद में कुछ विधेयक प्रस्तुत किए थे। इस मामले का संबंध इसी तरह के एक बिल के साथ है जो उन्होंने राज्यसभा में पेश किया था। पूछताछ अच्छी तरह से बीती। मेरे मुवक्किल ने अपना पूरा सहयोग दिया। सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने तथाकथित मुस्तस्लीक मामले की जांच शुरू की है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वायर टेपिंग उपकरण खरीदने की मंजूरी किसने दी थी और क्या इसके इस्तेमाल के दौरान सही प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है कि इस मामले में काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख एसीपी लीलराम दियाल को गिरफ्तार किया गया था।
0: मॉरिशस का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आम जनता के साथ अपने संपर्क को और मजबूत बनाने तथा अपनी सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहल कर रहा है। हर वर्ष सैकड़ों मॉरिशन अपने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने या विभिन्न विवादों के समाधान के लिए आयोग से संपर्क करते हैं। आयोग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए एबन हाइट्स में उसके मुख्यालय में एक शिकायत की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया गया जिसमें शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके विस्तारण तक की कार्यवाही को प्रस्तुत किया गया। दो वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्टलुइस के जीतू अस्पताल का शवगृह दोबारा संचालित होने लगा है। इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शवगृहों की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया। इन शवगृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रख रखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन इसके कार्यप्रणाली आम लोगों की नज़रों से प्रायः दूर रहती है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन जेगो गौशा को खो सकता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब तेहरान, वॉशिंगटन और लंदन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस टिप्पणी के बाद हिंद महासागर स्थित जेगो गौशा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। जेगो गौशा और शागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। लंबे समय से मॉरिशस की संप्रभुता और क्षेत्रीय दावों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक संबंधों और मॉरिशस के हितों पर इसके क्या संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं। मध्य पूर्व का संकट, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। मध्य पूर्व का संकट अब एक नए चरण में पहुंच गया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों के लगातार 13वें दिन यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में, यानी कि रेड सी में, सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के इस दावे के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इस बढ़ते संकट का असर पहले ही वैश्विक बाजारों पर दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और तेल का एक बैरल अब 100 अमरीकी डॉलर से अधिक पर पहुंच गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी तथा अन्य जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भीषण गर्मी की लहर के कारण यूरोप भर में आपातकालीन सेवाएं जंगल की आग से लगातार मुकाबला कर रही हैं। गुरुवार को इटली, फ्रांस और स्पेन में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में भीषण जंगल की आग अभी भी सुलग रही थी। दक्षिण पूर्वी

स्पेन में खतरनाक रेड हीट की चेतावनी जारी की गई है, जहां गुरुवार को वाल डेल अल्मांजोरा और अल्मेरिया में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की उम्मीद है। मध्य स्पेन के ग्वाडालाजारा में 32 भूमध्य सागरीय क्षेत्र

0: जंगल की आग अभी भी सुलग रही थी। दक्षिण पूर्वी स्पेन में खतरनाक रेड हीट की चेतावनी जारी की गई है, जहां गुरुवार को वाल डेल अल्मांजोरा और अल्मेरिया में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की उम्मीद है। मध्य स्पेन के ग्वाडालाजारा में 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जल चुकी है। 34 गांवों से लोगों को निकाला गया और स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पानी गिराने वाले विमानों ने घरों को जलने से बचाने में कामयाबी हासिल की है। गुरुवार को फ्रांस के अटलांटिक तट के साथ स्थित कस्बों और हॉलीडे रिजॉर्ट्स से लगभग 20,000 लोगों को निकाला गया, क्योंकि जंगल की आग की श्रृंखला में ताजा आग भड़क उठी और इस आग से निपटने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों को तैनात किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बोर्डो के दक्षिण पश्चिम में लेश कापफेरे शहर के पास एक जंगल में लगी आग 31 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गई थी। पेरिस क्षेत्र से भेजे गए दमकल कर्मियों सहित लगभग 700 दमकल कर्मियों को तैनात किया गया था। जंगल के किनारे रहने वाले 1,000 से अधिक निवासियों के साथ साथ हॉलीडे कैंप और कैंप साइट्स में ठहरे पर्यटकों सहित 10,000 से अधिक लोगों को रात भर में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर सिसिली में दमकल कर्मियों ने शनिवार से 1,000 से अधिक बार जंगल की आग बुझाने के अभियान चलाए हैं और आग से मुकाबला करने के लिए डबल शिफ्ट में काम किया है। पालर्मो में तापमान के 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने और शाम को भी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे न गिरने के कारण आपातकालीन सेवाओं पर भी भारी दबाव आ गया है। हवा ने आग की लपटों को और भड़का दिया है, जिससे जमीन राख में बदल रही है और घरों तथा व्यवसायों को खतरा पैदा हो गया है।
1: और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन जेगु गौशा को खो सकता है। इस पर ज्यादा विस्तार से इस रिपोर्ट में।
2: ये मुमकिन है कि ग्रेट ब्रिटेन अपनी दूसरी कॉलोनियों की तरह जेगु गौशा पर भी अपना नियंत्रण खो दे। यूनाइटेड किंगडम के लिए बेहतर होगा कि वो अपनी सीमाओं की कमजोरी को असलियत के नजरिए से देखे और समझे कि इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत मात्र उसकी सैन्य ताकत तक ही सीमित नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये धमकी इब्राहिम अजीजी की तरफ से आई है। ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के चेयरपर्सन और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर ने 23 जुलाई को एक्स पर यह संदेश पोस्ट किया। ये बयान सीधे यूनाइटेड किंगडम को निशाना बनाता है। तेहरान का आरोप है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए जेगु गौशा मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। वहीं बरतानी सरकार का कहना है कि वो 2400 घंटे और सातों दिन अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हैं।
3: Now the big question is, did Iran fire long-range missiles at Diego Garcia base?
2: ये पहली बार नहीं है जब इस संदर्भ में जेगु गौशा का जिक्र हुआ है। पिछले साल मार्च महीने में जब तनाव चरम पर था तो लंदन ने बताया था कि सैन्य अड्डे की तरफ दो मिसाइलें दागी गई हैं। बरतानी और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक मिसाइल अपने निशाने तक पहुंचने से पहले ही समंदर में गिर गई, जबकि दूसरी को रोक दिया गया था। हालांकि ईरान ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार किया था। जेगु गौशा ईरान से लगभग 4,000 किलोमीटर दूर है। हालांकि ईरान की जानी मानी बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे शहाब 3 या खुर्रम शहर जरूरी नहीं कि सीधे हमले को मुमकिन बनाती हों, लेकिन तेहरान के पास दूसरी क्षमताएं भी हैं, जिनमें लंबी दूरी के ड्रोन और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जो उसकी ऑपरेशनल पहुंच को बढ़ा सकती हैं।
1: मॉरिशस में ग्रैंड थॉर्नटन ने अपने कारोबारी विस्तार के तहत नई पहचान और विस्तृत सेवाओं की घोषणा की है। इस संबंध में गुरुवार 23 जुलाई को पोर्टली स्थित लुलाबोडने होटल में आयोजित कार्यक्रम में समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी की नई रणनीति की जानकारी दी। पिछले 16 वर्षों से मॉरिशस में कार्यरत GPU लिमिटेड अब ग्रैंड थॉर्नटन मॉरिशस लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। कंपनी के अनुसार ये बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ सेवाओं के दायरे का भी विस्तार किया गया है। अब कंपनी 4 प्रमुख क्षेत्रों ऑडिट, परामर्श यानी कंसल्टिंग, टैक्सेशन और आउटसोर्सिंग सेवाओं में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी का उद्देश्य मॉरिशस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना है। और जैसे कि हम आपको बता रही थी कि स्कॉटलैंड की ग्लासगो स्थित ओवो हाइड्रो अरीना

0: में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ खेलों का आधिकारिक उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों की रंगारंग मार्च पोस्ट रही। चार वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इन खेलों में इस बार 74 देश और क्षेत्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 3000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मॉरिशस के करीब 40 खिलाड़ी भी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमेलिया भी उपस्थित रहे।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ओवो हाइड्रो अरेना में पारंपरिक खिलाड़ियों की परेड से पहले की ये गूंज खेलों को आगाज देती है।
2: मॉरिशस
3: Boxer Fabrice Valerie and swimmer Anisha Tilak lead out Mauritius, who had a record-breaking Birmingham 2022 with 5 medals won. The Mauritian flag is one of only 2 in the world with 4 horizontal lines. Red represents the struggle for freedom, blue is its Indian Ocean home, yellow the shining light of independence, and green the year-round colour of its beautiful landscape. A fitting flag for this Commonwealth garden.
1: मॉरिशस के डेलीगेशन में मुख्य रूप से वहां पर बॉक्सिंग और स्विमिंग के खिलाड़ी मौजूद थे, जिनका प्रतिनिधित्व फैब्रिस वालिया ने किया। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ऋषभ पापी और मिशन के प्रमुख फैसल बंधन हैं। उनके साथ इन खेलों में भाग लेने वाले 74 देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इन खेलों में लगभग 3000 खिलाड़ी 10 खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

0: मौजूद 13,000 दर्शकों और दुनिया भर में करोड़ों टीवी दर्शकों ने स्कॉटलैंड की संस्कृति और परंपरा से भरपूर एक शानदार उद्घाटन समारोह का आनंद लिया। संगीत कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार टॉम वॉकर, केटी टर्नस्टॉल, कलम बियाटी और नीना नेस्बिट मंच पर उतरी। राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कमिला भी समारोह का हिस्सा बने, जिसके बाद औपचारिक कार्यक्रम हुआ। किंग चार्ल्स तृतीय ने 23वें कॉमनवेल्थ खेलों की औपचारिक लॉन्चिंग की। अब सभी की निगाहें प्रतियोगिताओं पर हैं, जो 2 अगस्त तक चलेंगी।
1: विवरण अभी याचना मिश्रा का रहा। राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के 24 वर्षीय मुक्केबाज जिगी आगात ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। 65 किलोग्राम से कम भार वर्ग में जिगी आगात का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के जिमेसी सिमामकेले से हुआ। मुकाबले के दूसरे राउंड में रेफरी ने प्रतिद्वंदी की स्थिति को देखते हुए मुकाबला रोक दिया और जिगी आगात को विजेता घोषित कर दिया। समाचार बुलेटिन के अंत में हमारे पूर्व सहयोगी धनराज बुलक को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनका आज 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। धनराज बुलक ने वर्ष 1988 में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में हैंडी वॉकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। वर्षों की समर्पित सेवा के दौरान उन्होंने कई जिम्मेदारियाँ निभाई और अंततः ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। MBC परिवार की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कठिन समय में उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मौसम की हाल की ओर याचना मिश्रा के साथ।
0: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा। कल दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरा सकते हैं। अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 12 से 14, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:50 पर होगा।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग मिला है और कंसल पर हमारे सहयोगी लुदविक का भी चिरंतन धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। Choc Sanchez Sonier, Rivière Baptiste Road, La Laura Saint-Pierre, Rivière Baptiste Road, La Laura Saint-Pierre, 61 साल की, 61 years old की, श्रीमती विमला गंगा बिसुन, श्रीमती विमला गंगा बिसुन, पैदाश नाम बिफन और जिन्हें स्वतिका के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर ला लोरा सैंपियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय ब्लॉन्च की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 1 PM। ला मेरे उकुले में 67 साल के, 67 ईयर्स ओल्ड के, श्री धनराज बुलक जिन्हें दान के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती नीता बुलक के घर उकुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। मॉस्को रोड रोजबेल में 95 साल की, 95 ईयर्स ओल्ड की, श्रीमती पुष्मावती भरत पैदाश्रम रामजावन और जिन्हें इंद्रावती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे ससिराज भरत के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मैगजानी रोजबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड पुचिराफे में 58 साल की, 58 ईयर्स ओल्ड की, श्री महावीर दिहोल जिन्हें जॉ के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई विशाल दिहोल के घर पुचिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। 75 साल के, 75 ईयर्स ओल्ड की, श्री वेंकटाचार्या लिंगालू जिन्हें किसना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे साज अस्पताल के मोचुअरी हाउस से निकालकर अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों सौ सैपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। रेलवे रोड रिविया जो पोस्ट में 67 साल की, 67 ईयर्स ओल्ड की, श्रीमती ललिता बिया सिंह पैदाश नाम गणपत और जिन्हें बिमला के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे गिरीश बिया सिंह के घर रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौआबू रिविया जुपस की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

स्टूडियो के घर में 6:29 हो चुके हैं. विशिंग ऑल माय डियर एंड लवली लिसनर्स अ वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम. जी हाँ दोस्तों, वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर फ्राइडे मैशअप.

0: And I really hope that everyone is having a good time by enjoying these beautiful and mesmerizing गाने जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. So thank you so much for choosing us. And well, जैसे कि आपको पता है कि nowadays there is an announcement for you on radio, जहाँ पे हम सभी लोगों को invite कर रहे हैं to do come here and enjoy here to be one day RJ हमारे साथ. जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप life में शायर हो सकते हैं, RJ बनना चाहते हो, and you have a passion for that job, you would love to be here in the studio. आप लोगों को अपनी आवाज सुनाना पसंद करोगे, सो व्हाई नॉट, यू कैन डू इट राइट नाउ राइट अवे बाय सेंडिंग अस अ वीडियो ऑफ जस्ट मिनिमम 1 मिनट 60 सेकंड्स के ऑन 52516363 52516363. जी हाँ, इस नंबर पे आप अपना वीडियो भेज सकते हैं. तो चलिए इस प्रोमो को आप सुन लीजिए एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर.
1: कभी सोचा है
2: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका.
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे,
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 52516363.
1: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस.
2: डोंट मिस इट.
3: You're listening to RM2, a Radio Masti.

बिल्कुल जी, आप ही तो लोग हो हमारे दिल का सुकून और आप हो हमारे प्यारे प्यारे आवरम टू रेडियो मस्ती लिसनर्स। 6:55 हो चुके हैं फिलहाल के लिए, इट्स टाइम फॉर गनीशा टू से गुड बाय टू यू। सो अपना ख्याल रखते जाना और यूं ही हमारा साथ देते जाइए। हैव अ लवली वीकेंड माय डियर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: संगीत पर साथ मिलकर ऐसे ही वाइब करने वाले हैं क्योंकि आज बहुत ही खास खास इवनिंग है एंड इट्स अ फ्राइडे व्हाट कुड बी बेटर एंड व्हाट कुड बी मोर स्पेशल देन दैट सो चलिए एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात लेकिन एक अलग ही मूड के साथ ऑफ कोर्स आज फ्राइडे है आपको मौका भी मिल रहा है और बहाने भी मिल रहे हैं थोड़ा सा हंसने के लिए मुस्कुराने के लिए थोड़ा सा डांस करने के लिए सो व्हाई नॉट जितना आपको मौका मिले ना तो मौके पे आपको हमेशा चौका ही लगाना है और अगर आप हमेशा गुड मोमेंट का इंतजार करेंगे गुड अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे तो ये आपके सामने से गुजर के निकल ही जाएगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सीज ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर 9 बजे तक आपको हम मौके ही मौके देंगे नाचने के लिए गाने के लिए धूम मचाने के लिए झूमने के लिए बस आपको जो करना है करिए क्योंकि आज फ्राइडे इवनिंग है नो इफ्स एंड बट्स नो अगर मगर और नो रोकना टोकना तो चलिए अगर आप लोग इस वक्त तैयार हो रहे होंगे कहीं पर जाने के लिए आप इनवाइटेड हैं किसी के यहाँ या फिर आपके यहाँ कोई इनवाइटेड है आप लोग साथ मिलकर डिनर ले रहे हैं इस वक्त सो चलिए हैव अ गुड गुड टाइम विद रेडियो मस्ती जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM इन योर फिल्मी जाम
1: फिल्मी जाम
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती,
2: क्या बात है क्या बात है। ऐसे गाने आप सुनेंगे तो आपकी रात जो है वो कमाल की हो जाएगी, और हम तो चाहते हैं ही कि बस आप हमारे साथ जुड़ जाए एंड यू फील दिस हैप्पीनेस। एंड ये हैप्पीनेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस इट्स वेरी सैड टू नो कि बहुत सारे लोग हैं बस सैटरडे का ही इंतज़ार करते हैं ताकि आप थोड़े बहुत खुश हो। हाँ, मुझे पता है कि सैटरडे संडे को बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिन को आप हंसना ही बंद कर दें। आप उतने ही खुश रह सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका मंडे, आपका फ्राइडे, आपका संडे हमेशा खुशी से ही बीतेगा तो आपको फ्राइडे का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका इंतज़ार तो सबको तो होता ही होता है, ये तो अलग बात है। बट हम चाहते हैं कि आप हमेशा हर एक सिचुएशन में हमेशा खुश रहें। वेल, चलिए अभी के लिए आज

0: फ्राइडे इवनिंग है तो आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम जरूर बढ़ेंगे। हाय नमस्ते दिव्या जी, होप यू आर डूइंग वेल। आशीष, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एज यूजुअल अगला गाना गुजाओ स्पेशली आपके दोस्तों के लिए, किशन, विकी, अश्विन, विराज, सान, नायक, उन्लेश, आपके दो पैसेंजर्स के लिए, करिश्मा, रंजीता। और आप एक बार फिर से ये गाना मांग रही हैं, चेहरा क्या देखते हो। एंड अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लास्ट टाइम आपने गाने की फरमाइश की थी तो हमने चलाया था, आपको याद है ना। लेकिन अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बस हम यहाँ पर रॉकिंग धमाकेदार गाने चला रहे हैं अभी के लिए, बिकॉज इट्स फ्राइडे इवनिंग। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे हर एक गीत के साथ वाइब करें और थोड़ा सा डांस भी करें। एंड यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एंड आई जस्ट होप दैट यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। और हम चाहते हैं कि बस रेडियो मस्ती को सुनने के बाद आपको ज़रूर फील हो कि वीकेंड नज़दीक हैं। तो चलिए इसको मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ और खूबसूरत गीत हैं आपके लिए। एंड साथ में डोंट फॉरगेट कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस। यस यस, आपके मैसेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हमारा शो ही इनकम्प्लीट है। सो वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: फिल्मी जान।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जाम रेडियो
1: मस्ती। भाई हम तो कहते हैं जब तक जवानी है तब तक आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिए कि सब लोग कहे कि वाह क्या जिंदगी जी रहा है। एंड हम तो चाहते हैं ही कि आप इस जवानीपन का बहुत बहुत ही फायदा उठाए। मतलब जब तक आप जवान हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जाइए, घूमिए, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड और देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और कभी कभी हम एक जगह पर बैठे होते हैं और खूबसूरती ऑटोमेटिकली हमारे नज़र और हमारे नज़रिए के सामने आ ही जाती है। इसीलिए शायद कहते हैं ना कि जिंदगी आप किस तरीके से देखते हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू और ये पर्सपेक्टिव भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ऑलरेडी 7:28 एंड चलिए दिव्या का साथ है योर फिल्मी जाम टिल 9 PM। इट्स योर वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग जहां पर हम और आप इसको साथ साथ में बिता रहे हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके मैसेजेस को इंक्लूड करके। सो चलिए यहां पर आप कहती हैं हेलो नमस्ते गुड इवनिंग दिव्या टीना ही एंजॉइंग द शो, थैंक यू सो मच। हाई वॉल्यूम पर आप हमारे शो को एंजॉय कर रही हैं, क्या बात है, फ्राइडे इज़ फन डे, ये तो आपने एकदम सही कहा। एंड आप इस वक्त डिनर कर रही हैं फैमिली के साथ, वन प्लेट इज सेट फॉर यू, क्या बात है, इसका मतलब हमारा हिस्सा भी आप ही खाना चाहती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है। और फ्राइडे के दिन में बहुत सारे लोग डाइट करते हैं, लेकिन फ्राइडे जब भी आता है सब लोग कहते हैं कि आज तो चीट डे है। तो चलिए टीना जी, अगर आपके लिए भी आज चीट डे है तो जो प्लेट आपने सेट किया है मेरे लिए उसमें मेरा हिस्सा भी खा लेना, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना गोज आउट टू ऑल योर फैमिली एंड टू ऑल दोस्ट जो आपको जानते हैं, टेक केयर, स्टे सेफ एंड आपको भी शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू। एंड साथ में यहाँ पर आप कहती हैं हेलो प्लीज़ प्लीज़ पास द होल मैसेज, डेडिकेटिंग अ लवली सॉन्ग फॉर माई मामा हु इज सेलिब्रेटिंग हर एनिवर्सरी टूडे, विशिंग हर लोड्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ फ्रॉम हस्बैंड कोमल। उनकी बेटी हैं, दामाद हैं, वी हैव प्रीति एंड ध्रुव चुरामन, बेटे बहुएं विशाल, रजनी, विकी, पुन, ग्रांड डॉटर यवनी, साथ में वी हैव यशवी, ऐश्वर्या और गिरीशा की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार। तो आपकी प्यारी मामा को लोड्स लोड्स ऑफ हैप्पीनेस एंड साथ में बेस्ट विशेस हमारी RM2 टीम की तरफ से। एंड आपने उनका नाम नहीं लिखा है तो चलिए उनको बहुत सारा प्यार। यहाँ पर आप कहती हैं नमस्ते दिव्या जी, प्लीज़ अगला गाना मेधा, मनीष, श्रेया, अरियान, नील, शीतल, विकी, रितिना, नितिन, संगीता।

0: मोताई ब्लॉन्च से थैंक यू सो मच, आपको भी धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी अपने मैसेजेस भेज रहे हैं तो प्लीज़ हमें याद कीजिएगा ऑन व्हाट्सएप, विच इज़ 5499-1294। यस, नंबर सेम है, बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है जिसकी वजह से हम आपके मैसेजेस को वेलकम नहीं कर पा रहे हैं, और नॉर्मल मैसेजेस तो व्हाट्सएप पर हमें याद करिएगा 5499-1294।
1: फिल्मी जान, RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती
2: सौदा खरा खरा दैट्स अ गुड न्यूज़ कि आप लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हर एक सॉन्ग्स को एंड डेफिनेटली आपको तो एंजॉय करना ही है क्योंकि आज फ्राइडे इवनिंग है और जैसे हम कह रहे थे आपको बहाने भी मिल रहे हैं और मौके भी मिल रहे हैं. हेलो जी गुड इवनिंग आपको एंड आपने पूछा हाउ आर यू. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. थैंक यू सो मच सुया जी हमारा साथ देने के लिए. इस वक्त आप खाना बना रही हैं और साथ में कनेक्टेड हैं विद RM2 बिहारी फैमिली के लिए भी ऑफ कुंगुमा जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ. थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं. वेल इट्स सो वंडरफुल नोइंग कि हर एक जो हमारे लिसनर्स हैं आप लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हर एक गीत को एंड इट मींस अ लॉट जब आपके मैसेजेस आते हैं. अ मोमेंट ऑफ अप्रिशिएशन जब आप निकालते हैं हमारे लिए वक्त और कहते हैं कि बस हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है हर एक गीत. इससे हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और ऐसे ही आप एंजॉय करते रहिएगा और इरादा तो यही है कि आपको हम नचाएं टिल 9 PM. ऐसे ही नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए हम म्यूजिक चलाते रहेंगे एंड डोंट फॉरगेट यू नीड टू वाइब टुगेदर क्योंकि आज है फ्राइडे इवनिंग.
0: फिल्मी जैम
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: किया आपको थोड़ा बहुत मौका मिले इस फ्राइडे इवनिंग को एंजॉय करने के लिए. एंड जैसे शुरुआत में हम कह रहे थे मे बी आप कहीं पर इनवाइटेड हैं या फिर शायद अनएक्सपेक्टेड प्लान्स भी बन गए होंगे, फटाफट आप तैयार हो रहे होंगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ निकलने के लिए, तो आपको बस बों कुहाज. एंड आई जस्ट होप दैट यू विल बी मेकिंग मोस्ट ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट. और हम यही चाहते हैं कि आप इस फ्राइडे इवनिंग को इस तरीके से एंजॉय कीजिए कि सब लोग आपको देख कर कहे कि वाह वाह क्या जिंदगी जी रहा है. और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारी गीतों को सुनकर मुस्कुराए, हंसे एंड वाइब टुगेदर. एंड साथ में आपके मैसेजेस भी आने चाहिए. यस यस, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499 1294 5499 1294. इस फ्राइडे इवनिंग में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे होंगे. यस, आपको भी हम विश करेंगे बों कुहाज. एंड काम करते करते और गाने सुनते सुनते आपका वक्त निकल ही जाएगा.
1: Filmy Jam. RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: नाच मेरी जा हो की मगन तू। और हमने कहा ना कि आज नो किंतु परंतु नो इफ्स एंड बट्स, आज कोई रोक टोक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आज है फ्राइडे इवनिंग।

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती।
2: भाई देखिए, आज पार्टी करने का दिन है, आज खुशियां मनाने का दिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिग्नल तोड़ तार के आगे बढ़ते रहे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, और आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर ये रियलाइज़ करना है कि भले ही आप पार्टी करें, बट अगर आप ड्रिंक करने वाले हैं तो ड्राइवर कोई और होना चाहिए। सो चलिए, उम्मीद करते हैं दैट यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम। RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग रोज़ रोज़ हमें चूज़ करते हैं एज योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, जहाँ पर हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बस ट्राई करते रहते हैं। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और हम जीत को हासिल करने में लगे हुए हैं। और जीत ये है कि जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम जीत चुके हैं। सो इसीलिए इट्स वेरी वेरी कंपल्सरी कि आप हमारे गीतों को सुने, हंसे मुस्कुराए, बस लाइफ को एंजॉय कीजिए। बस ये जो मोटो है लाइफ में, ये होना चाहिए कि आप जियो और जीने दो। एंड आज तो आप खुशियाँ मनाइए, बिकॉज यू हैव अ रीज़न। रीज़न यही है कि आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, नोइंग दैट कल के लिए अलार्म सेट नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ द बिगेस्ट हैप्पीनेस, है ना, क्योंकि आप 5 दिनों तक लगातार अलार्म डालते रहते हैं, सुबह उठ के काम पर जाते हैं, सेम रूटीन। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी कभी जहाँ पर ज़रूरी दिखे, आप थोड़ा बहुत अपने वीकडेज़ के रूटीन को भी थोड़ा सा ब्रेक करें, ताकि आपकी जो डेली रूटीन है वो मोनोटोनस ना लगे। और इस मोनोटोनस एनवायरनमेंट को ब्रेक करने के लिए फ्राइडे को एंजॉय कीजिए, सैटरडे को भी एंजॉय कीजिए, संडे को भी आप एंजॉय कीजिए, लेकिन संडे का दिन होता है रिलैक्स करने के लिए, ताकि आप थोड़ा बहुत अपने एनर्जी को गैदर कर पाएँ अपने नेक्स्ट वीकडे को स्पेंड करने के लिए। के लिए जितना हो सके अभी जितना अपने काम किया है ना, उसको सब भुला कर अभी आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। और इस तरीके से एंजॉय कीजिए कि अपने सारे जो काम का प्रेशर है, जितने भी सारे आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप भुला दें।
0: फिल्मी जैम
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: अभी के लिए चम्मू आ गई है आप लोगों का साथ देने के लिए. वैसे कहते हैं ना कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आए वी नीड टू फाइंड सम ह्यूमर इन दैट. अभी किस तरीके से खुशी खुशी आपने ब्रेकअप वाला गाना सुना, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो दिल कितना टूटता है ना, और दिल में कितना दर्द होता है ये तो जो ब्रेकअप करते हैं उनको ही पता होता है. लेकिन जैसे हमने कहा एट टाइम्स वी नीड टू फाइंड ह्यूमर इन एवरीथिंग. And trust me, जिस चीज के लिए एक टाइम पर आप रोते हैं ना, आगे चलकर उसी चीज को आप सोचकर हंसते भी हैं. These are the cocktails of feelings and these are the emotions. अब क्या करें भाई, जिंदगी का यही दस्तूर है and बस इसी का नाम जिंदगी है. कभी खुशी कभी हम, लेकिन साथ रहेंगे हम till 9 PM. इतनी गारंटी और इतना प्रॉमिस तो जरूर करते हैं.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: छम्मो आके चली भी गई, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है. ऑलरेडी 8:54. चलिए इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात बहुत ही जल्द कल 4 बजे से लेकर 7 बजे तक. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग. शुभ रात्रि, शब बखैर.

गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है सभी हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का। मैं हूँ विरिता, लेकर आई हूँ आपके लिए लेट नाइट ग्रूव, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो मस्ती पर। तो फ्राइडे इवनिंग का मूड ऑलरेडी ऑन है, ऑफिस की टेंशन को बोलो बाय बाय और वीकेंड की मस्ती को बोलो हाय। चलो अगले कुछ घंटों में हम यहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ऐसे ऐसे गाने आपके लिए लेकर आएंगे जिससे आपकी पूरी स्ट्रेस, पूरे वीक का स्ट्रेस है वो भगा देंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना लेट नाइट ग्रूव।

0: भाई जबरदस्त हो गया है शुरुआत। और यहाँ पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं या घर पे रिलैक्स मोड में है, कोई बात नहीं जी। फ्राइडे को हम बनाएंगे एकदम जबरदस्त हमारे गीतों के साथ। साथ देते रहिए, झूमते रहिए, क्योंकि वीकेंड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

देखो भाई, हम तो यही जानते हैं कि फ्राइडे का बस एक ही रोल होता है, स्माइल ज्यादा करो, स्ट्रेस को कम करो। और आज का हमारे जो प्लेलिस्ट है एकदम आपके लिए ऐसे ऐसे रिमिक्स गाने लेकर आएंगे कि आपके पैर जो है ना ऑटोमेटिकली टैप करने लगेंगे। तो रेडी हो जाइए हमारे धमाकेदार गीतों के साथ, हम आपको कर रहे हैं एंटरटेन आपके अपने रेडियो मस्ती पर।

भाई 4 बजे आपकी तो छुट्टी हो गई, आप तो घर पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऑफिस से निकलकर घर जा रहे हैं क्योंकि उनको सारा काम कंप्लीट करना होता है ताकि उनका वीकेंड कोई डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए, हम भी चाहते हैं कि आपके इस मूड को कोई डिस्टर्ब ना करे।

0: Tak, tak, Bollywood.
1: चले तो आज का जो प्लान है, आप अगर अपने दोस्तों के साथ हैं और हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं विनीता आप सबों का फिर से वेलकम करती हूं आप ही के प्रोग्राम में, जो कि है लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती। आज के दिन अगर आज इसको आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, तो अभी से ही अपने दोस्तों को बोल दो कि ओ भाई सुनो, रेडियो ऑन करो।

0: काका बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

फैंस का मूड यहाँ पे सब पे चढ़ गया है, गाने ऐसे हैं तो सोएगा कौन, और हम सोने के लिए थोड़ी ना प्रोग्राम करते हैं, हम तो जगाने के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए इन्हीं गीतों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप कहीं भी हैं अपने आप को रोकना नहीं, जहाँ मन करे डांस निकले, निकलने दो, करने दो।

0: मस्ती
1: रेडियो मस्ती के साथ जुड़े जितने भी हमारे दोस्त हैं, हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम, थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें प्यार देने के लिए. ये होती है असली एनर्जी जब सारे दोस्त साथ में होते हैं. चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना जो कि आपको सोने नहीं देगा.
2: Dale, don, dale, dale, dale. Reggaeton de cor.

0: देखो भाई, वीकेंड जो है ये तो शुरू हो ही गया है, ऑफिशियली हम इसी मोड पे आ ही गए हैं। एंड हम चाहते हैं कि आप अगर घर पे हो, रोड पे हो, ऑफिस में हो, जहाँ से भी सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी ऑफिस में बहुत सारे लोग सुनते होंगे, काम करते हो भाई, एंड स्पेशली जो लोग अभी हॉस्पिटल्स में हैं, पुलिस स्टेशन में हैं, जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं हमें, ओवरनाइट काम कर रहे हैं आप, आपको कहेंगे थैंक यू सो मच। एंड हमारे गीतों के साथ झूमते चलिए, ये है आपका रेडियो मस्ती।
1: RM2 Radio Musty. Feel the musty.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: पता है म्यूजिक जो होता है ना एकदम हमारा मूड बदल देता है। ये तो सबसे अच्छी बात हमें अच्छी लगती है म्यूजिक के बारे में कि कोई भी गाना सुन लो ना अच्छा लगता है कि जैसे अभी अभी हमारी टेंशन ना रफू चक्कर हो गया, भाग गया, कहीं पे डिसअपियर हो गया। तो म्यूजिक का ऐसा ही असर आप पे हो। इसी के साथ वी कंटिन्यू विद सम ग्रेट म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो।

ओह माय गॉड, टाइम रियली फ्लाइज यार. और कंपनी अच्छी हो तो ऐसा लगता है कि भाई अभी अभी तो शुरू किया है और अभी जाने का भी टाइम हो गया है. घबराओ नहीं, मैं यहीं पे हूँ लेट नाइट ग्रूव्स रेडियो मस्ती पर विनीता आपके साथ है. चलिए मूड को थोड़ा और हाई करते हैं.

तो दोस्तों लेट नाइट ब्रूज में आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. आई एम गोना कैच यू टुमारो इवनिंग सेम टाइम इन लेट नाइट ग्रूव्स. कुछ ऐसे गाने लेकर आएंगे. अभी आप अपना ख्याल रखना एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल. सारी टेंशन को करो ढुशुम ढुशुम और स्माइल के साथ अपनी इस रात को. मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम में आपको बाय बाय कहती हूँ. मिलते हैं कल. टेक केयर. लव यू. बाय बाय.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: You're listening to RM2, a radio musty.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।